2:30 सुनूंगी स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग रेनबो दिल्ली चैनल तो। दोपहर 3:00 सुनूंगी प्रोग्राम रेडियो टेक डॉक्टर साढ़े दिल्ली FM रेनबो चैनल तो। शाम 4:00 तुसी फोन कॉल के जरिए साढ़े नाल जुड़ सकते हो प्रोग्राम हैलो जलंधर विच ते सुन सकते हो अपनी पसंद के हिंदी पंजाबी गीत। शाम 5:00 का समा रहेगा साढ़े नौजवान साथियों की विशेष प्रोग्राम युववाणी का। शाम 6:00 सुनोगे जिंदगी के वक्त वक्त पहलुओं के नाल जुड़िया प्रोग्राम लव यू जिंदगी। और ठीक 7:02 ते सुनोगे बॉलीवुड अते बॉलीवुड जगत की जानकारी अते खास शख्सियत की जिंदगी ते आधारित प्रोग्राम फिल्मी दुनिया।

हर शुरुआत में गणेश, हर सफलता में गणेश, हर प्रार्थना में गणेश, हर विश्वास में गणेश। आइए विघ्नहर्ता को नमन करते हैं और उनका ध्यान करते हैं।

तुझ बिन अवर न जाना मेरे साहिबा, गुण गावा नित तेरे वाहेगुरु गुण गावा। बाकी उस परम पिता परमात्मा दे गुण गान नू मन करता है जो सानू सब कुछ देंदा है, जो साडा सहारा है, ते उस परमात्मा दा हर साह दे नाल गुण गाना, उस परमात्मा दी हर साह दे नाल सिफत करना, ये साडा फर्ज बनता है।

जहां श्रद्धा की ज्योति जलती है वहां निराशा का अंधकार मिट जाता है। मां का दरबार वो स्थान है जहां हर भक्त का सर श्रद्धा से झुक जाता है। तुसी सर्वन कर रहे हो भगती रसनाल भरपूर प्रोग्राम वंदना।

बांसुरी की मधुर तान में, बांसुरी की मधुर तान में प्रेम और भक्ति का संदेश छिपा है। श्री कृष्ण जी का नाम लेते ही मन आनंद से भर उठता है। जी तुसी सर्वन कर रहे हो भक्ति रस नाल भरपूर प्रोग्राम वंदना 102.7 FM रेनबो ते प्रोग्राम वंदना दा आनंद तुसी माण रहे हो। ते हुण इस वक्त स्टूडियो घड़ी ते समा 6:30 होने जा रहे हैं। तो एफ एम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ के नाल हुण असी एफ एम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्ज़ से आकाशवाणी अमृतसर वाले स्रोतियां नाल जुड़ चुके हैं। असी आकाशवाणी अमृतसर वाले स्रोतियां का निघा स्वागत करते हैं जो कि सवेर के 10 तक साढ़े नाल जुड़े रहेंगे। एफ एम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़, एफ एम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी के रेनबो चैनल तो बोल रहे हैं। तुसी सर्वन कर रहे हो भगती रस नाल भरपूर प्रोग्राम वंदना।

जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। बाकी उस परमात्मा दी जिदे उपर मेहर हो जावे, जिस मनुख दे उपर वह परमात्मा अपना मेहर भरिया हथ रख दे, उस इंसान नू किसी भी दुख तकलीफ दे विच ना तो वह परमात्मा पैण दिंदा है, ना ही उस इंसान नू दुख मुश्किलां घेर सकदियां ने। उसका सच्चा परमात्मा उसकी हर समय रख्या करता है।

जब जीवन की नाव मझधार में हो और कोई किनारा ना दिखाई दे, तब विश्वास का दीपक जलाइए और श्री राम जी पर विश्वास रखें। श्री राम जी आपको स्वयं जिंदगी में वो रोशनी की किरण जरूर दिखाएंगे।

FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़, FM बैंड 103.6 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी सर्वन कर रहे हो भगती रस नाल भरपूर प्रोग्राम वंदना। जिस मन नूं गुरु दा दर मिल जावे उस नूं होर किसे सहारे दी लोड़ नहीं रहिंदी। गुरु दा दर्शन ही वो रोशनी है जो जीवन दे सारे हनेरियां नूं दूर कर दिंदी है।

एहसास पहली मोहब्बत का दिल में समाया है। एहसास पहली मोहब्बत का दिल में समाया है। नाम तेरा ही सनम मैंने सांसों में बसाया है। बहका इस कदर तेरी मोहब्बत के नशे में, बहका इस कदर तेरी मोहब्बत के नशे में, मुश्किल इस दिल पे रखना इख्तियार हो आया है। तेज हुई सांसें तेज दिल की धड़कन भी, तेज हुई सांसें तेज दिल की धड़कन भी, प्यार तेरा जाने कैसा ये मुकाम लाया है। एहसास पहली मोहब्बत का दिल में समाया है। मैका जी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और नाल दी नाल न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप वाले दोस्तों नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। स्टूडियो घड़ी ते समा 7:04 और 32 सैकंड हो रहे हैं जनाब। थोड़ा और मेरा यानी कि सब दा फेवरेट वाला प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जलंधर दा आगाज़ हो चुका है जनाब। तो अज दा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जलंधर लेके थोड़ा दोस्त ललित सोनी हाजिर हो चुका है जनाब। और मेरा ते थोड़ा साथ बनया रहेगा ठीक 10 बजे तक, 7 to 8:30 तक तुसी सुनोगे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जलंधर। 8:30 होणगे पंजाबी दे विच खबरां और म्यूजिकली बैक टू बैक दा प्रोग्राम। अडी टप्पा दा आनंद माणोगे 8।

महिला T20 वर्ल्ड कप दी। जी हाँ, महिला T20 वर्ल्ड कप जड़ा कि खेडा जा रहा और अज जड़ाया इस वर्ल्ड कप दे विच जड़ाया तीन मुकाबले होण जा रहे ने। तो इस वर्ल्ड कप दे जड़े तीन मुकाबले होण जा रहे ने, जिदे विचों सब तो पहला मुकाबला मैनचेस्टर दे विच आयरलैंड ते स्कॉटलैंड दीआं टीमां विचकार होएगा और उस तो बाद शाम 7 बजे इसी मैदान ते आस्ट्रेलिया ते साउथ अफ्रीका दीआं टीमां दा मुकाबला होएगा। और आस्ट्रेलिया 6 खिताब दे नाल इस टूरनामेंट दे विच सब तो सफल टीम बनी हुई है, जबकि साउथ अफ्रीका टीम लगातार 2 फाइनल हार चुकी है और इन्हां दोनों टीमों के ग्रुप एक नूं जिहड़ा ग्रुप ऑफ डैथ भी कहा जाता है, क्योंकि एसी ग्रुप दे विच भारत भी आउंदा है। और अजिही स्थिति दे विच आस्ट्रेलिया और अफ्रीका जिहड़ा आ शुरुआती मैच दे विच ही मजबूती बनाउण दी कोशिश करनगे। और अज दा तीसरा और आखिरी मुकाबला रात 11 बजे जिहड़ा आ ओह न्यूजीलैंड और वैस्टइंडीज़ दीआं टीमां दे विचकार खेडिया जाएगा। और 2024 के विजेता अभियान के न्यूजीलैंड ने सैमीफाइनल विंडीज़ नू हरा के जड़ाया ही फाइनल दे विच जगह बनाई सी। हालांकि वैस्टइंडीज़ की टीम नू हुण एक बार जड़ाया एक बार 2016 दे विच भी एक खिताब जड़ाया जीत चुकी है। तो इस तरह कुल 4 दे विचों 3 चैंपियन टीम एक ही दिन

0: सुनो, की तुसी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना बारे सुनिया है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली

इस नाल तुहाडा घर सूर्य घर बन जांदा है, यानी तुहाडा बिजली दा बिल जीरो। होर पैदा हुई कोई भी वाधू बिजली ग्रिड नूं बेच के पैसे भी कमा सकदे हो। तां तुसी बैठे क्यों हो? हुणे रजिस्टर करो PM सूर्य घर .gov.in ते।

102.7 FM Rainbow 103.6 MHz और नाल दी नाल न्यू जोन AIR ऐप ते तुसी प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जलंधर दा आनंद माण रहे हो अपने दोस्त ललित दे नाल। जिथे जिथे भी आवाज़ जा रही है, जिथे जिथे भी प्रोग्राम तुसी इंजॉय कर रहे हो, तुहानू सब नू प्यार भरी सत श्री अकाल और उम्मीद करते हैं भी तुसी हमेशा चढ़दी कला विच रहो, खुश बाश रहो। तुसी जो चाहते हो तुहाडे उह सुपने पूरे होण, पर सुपनों नूं पूरा होने दे लई जिंदगी दी राहां ते चलदे हुए कोई रुकावट ना आवे ते अपने आप नूं अपने शरीर नूं जिहड़ा आ फिट रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अजकल दी इस भज नठ भरी हुई जिंदगी दे विच हर कोई जिहड़ा आ बिजी हो चुका है, उहनूं अपने आप दे लई अपनी सेहत दा ख्याल रखण दे लई किसे कोल समां नहीं है। पर इत्थे असीं गलती कर जांदे आ, असीं अपने बिजनेस दे चक्कर दे विच, असीं पैसा कमाउण दे चक्कर दे विच रब वालों दिती गई चंगी सेहत नो अजाई बर्बाद कर देंदे ने और बाद विच सानू फिर पछताउणा पैंदा है, क्योंकि समय रहिंदे हुए जेकर किसी चीज़ की कदर ना की जाए, चाहे वह इंसान होवे चाहे थोड़ी सेहत होवे, फिर उस तो बाद फिर उहदा माड़ा प्रभाव देखण नू मिलदा है। सो इस लई समय रहिंदे ही अपने आप दे बारे सोचना और अपने सेहत दे बारे ख्याल रखना जेकर शुरू कर दिए तां बहुत वधिया होएगा और जिंदगी जिहड़ी आ ओह बेहतरीन होएगी। सो ये मैं नहीं कह रहा, इहदे लई जिहड़े खुद जिहड़े एक्सपर्ट डॉक्टर ने ओह दस रहे ने कि ओह डॉक्टर की करदे ने, लोकां दी सेहत दा ख्याल रखण वाले डॉक्टर अपनी सेहत दा ध्यान किवें रखदे ने, अपनी सेहत दा ख्याल किवें रखदे ने। सो खुद ऑर्थोपैडिक सर्जन जिहड़े ने ओह अपने विचार सांझे कर रहे ने। सो उहनां दा मनना है कि उम्र वधण दे नाल नाल हर कोई शरीर जिहड़ा आ फिट मजबूत और एक्टिव रखना चाहुंदा है। सो इहदे लई जिहड़े आ ऑर्थोपैडिक सर्जन जिहड़े ने ओह कुछ छोटियां छोटियां आदतां अपनाउंदे ने। सो उन्होंने अपनी आदतां जिहड़ियां आ ओह साडे नाल शेयर कीतियां होईयां ने, ते उन्होंने दस्सिया है कि असीं भी अपनी जिंदगी दे विच उहनां आदतां नूं जेकर अपनाउंदे आ तां साडी सेहत भी तंदरुस्ती भरी हो सकदी है, क्योंकि ये जिहड़ियां आदतां है साडे शरीर नूं ताकत दिंदियां ने, साडे शरीर नूं बैलेंस विच रखदियां ने और लचकीला बना के रखदियां ने। ते उम्र दे वधन दे नाल नाल जिहड़ा शरीर साडा जिहड़ा एक्टिव रहिंदा है और सेहतमंद रहिंदा है। सो ऑर्थोपैडिक्स जिहड़े डॉक्टर ने उहनां दा कहना है कि वेट लिफ्टिंग दे विच भारी वजन सब तो ज़्यादा जरूरी है, कि मसल दा तुसी सही तरीके दे नाल इस्तेमाल करो और हल्के वजन कंट्रोल्ड मूवमेंट ते सही फॉर्म दे उपर जोर देना चाहिए। भारी वजन जिहड़ा उठाउण दी बजाय तकनीक दा ज़्यादा प्रयोग करके ही कोई वजन उठाना चाहिए। सो उन्होंने यह भी कहा कि वजन अपने शरीर के मुताबिक जिहड़ा तुसी प्राप्त मात्रा दे विच प्रोटीन लै सकते हो, जिमें कि 1 किलोग्राम वजन के उपर 2.2 ग्राम प्रोटीन लैनी पैंती है, यानी कि 60 किलो वजन वाला जो कोई इंसान है तो वह करीब 120 तो लैके 130 ग्राम प्रोटीन जिहड़ा है वह अपनी डाइट के शामिल कर सकता है। और डॉक्टर का कहना है कि जेकर साडा शरीर फ्लैक्सीबल रहेगा तद असी आसानी दे नाल चल फिर पावांगे और दूजियां एक्सरसाइज भी कर सकांगे। और इहदे नाल तुसी कहिंदे एक चीज़ ऐड कर सकते हो, अपने रोज़मर्रा दे कम्मां दे नाल नाल थोड़ी थोड़ी स्ट्रैचिंग जिहड़ी आ जरूर करिया करो, जिहड़ियां खास करके साडियां महिलावां ने, औरतां ने किचन दे विच काम करदियां ने, उहनां नूं खास करके जिहड़ा अपने शरीर का ख्याल रखना चाहिए है। तो डॉक्टर का मानना है कि इस वधदी हुई उम्र के जिहड़ा बहुत सारिया दिक्कत का सामना करना पैंदा, जिवें कमर दर्द दी समस्यावां का सामना करना पैंदा। सो इहदे लई की करना चाहिए है कि अपनी जिहड़ी आ अपनी पिठ नूं जिहड़ा आ ओह राहत देण वाली जिहड़ियां एक्सरसाइज आ तुसीं ओह कर सकदे हो, और खास करके एक्सपर्ट का मानना है कि तुसी अपने आप नू जेकर तंदुरुस्त रखना चाहते हो तो अपने पैरों की एक्टिविटी जी थोड़ी बहुत जरूरी होनी चाहिए है, क्योंकि जेकर थोड़े पैर ताकतवर होंगे, पैरों के चुस्ती फुरती होएगी तो अगे जा के उम्र के वधदे हुए पड़ाव के पहुँच जाओगे उस वक्त भी थानू जड़ा बैठन उठन लगे या फिर पौड़ियाँ चढ़न लगे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।

ना जी ना, थोड़ी जिंदगी च रंग भरना रहा FM रेनबो। बदलते हुए मौसम विच तुसी रखना है अपना ख्याल, ते सोने सोने गीत इंजॉय करने ने FM रेनबो दे नाल।

कानूनी सेवाएं अथॉरिटी एक्ट 1987 की धारा 12 के तहत योग नागरिक मुफ्त कानूनी मदद न्याबंधु मोबाइल ऐप से www.probono-doj.in तो प्राप्त कर सकते हैं।

चलती है, माना ये सारी तेरी हाई हील्स की गलती है। रुक तो जा तू है गौर, ये तो बता तू है कौन, कहां से आई है कहां को जाएगी, पागल लड़की मुझे मरवाएगी।

नमस्कार, स्वीरदे नोवा चुकी ने एफएम रेनबो ते विला हो गया है। इस वक्त न्यूज हेडलाइंस था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमरीकी समुद्री फौज के हमले जिस विच तीन भारती नाविक मारे गए सन ते अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो कोल सख्त विरोध दर्ज करवाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर दौरान स्वदेशी मिजाइल प्रणालियां की शानदार कारगुजारी भारत के रक्षा खोज और विकास सिलसिले की वधदी ताकत का प्रमाण है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे भर्ती बोर्ड की भर्ती प्रक्रिया संबंधी भारतीय रेलवे के सीनियर अधिकारियों नाल एक उच्च पदरी समीक्षा मीटिंग की। भारत एआई मिशन ने वारिया नां का एक वीडियो मॉडल जारी किया। घट कीमत से अत आधुनिक वीडियो बनाए जा सकेंगे। बीजेपी

0: यार राहुल, मैं काफी दिन तो तेनु देख रहा है, तू काफी बुझा बुझा जा, उदास उदास जा लग रहा है, की हो गया?
1: की दसा यार, काम दा प्रेशर इन्ना है ना, मैनु लगदा है ना मेरी जिंदगी बोझल हो चुकी है। हुण तू ही दस, मैं इदां दा की करां कि जिंदगी च बुल्ले लुट सकां ते सुकून नाल रवां।
0: लै मित्रा, घबराउण वाली नहीं कोई गल, अपने कोल इहदा वी इह हल।
1: की
0: जे तू चाहुंदा है तेरी रूह नूं मिले सुकून, ते कर मित्रा।

अखियां जाग गुजारी रात, अखियां जाग गुजारी रात, सोता दे विच सारी रात। अखियां जाग गुजारी रात, सोचा दे विच सारी रात, एक सूरज नू वेखन ली करदा रहा तैयारी रात। बंद ना हुईयां नैणा दी खुली रह गई बारी रात, फिर ना मैनू नींदर आई जागे सां एक वारी रात। अखियां जा गुजारी रात, सोचा दे विच सारी रात। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। 102.7 FM रेनबो, 103.6 मेगाहर्ट्ज और नाल दी नाल न्यूज़ ऑन AIR ऐप वाले दोस्तों नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। मैगा जी स्टूडियो कड़ी ते समां 9:04:55 हो चुके ने और प्रोग्राम जनाब आगाज हो चुका है। वो प्रोग्राम जिहदा तुहानू बेसब्री दे नाल इंतजार रहिंदा है, पंजाब पंजाबी और पंजाबी दीआं बातां पाउंदा प्रोग्राम दिल अपना पंजाबी। इस प्रोग्राम दे विच तुसी भी शिरकत कर सकदे हो अपने किसी खास टैलेंट दे नाल, चंगा लिखदे हो, चंगा गाउंदे हो, या फिर तुहाडे कोल कोई पुराना किस्सा कोई कहानी याद है, या फिर थोड़ी यादों के झरोखे कोई यहोजी याद छुपी हुई है जिड़ी तुसी चाहते हो कि वो साढ़े सारे स्रोतों नाल सांझी की जा सकती है, तुसी उसनू सांझा कर सकते हो। और थोड़े लागे आस पड़ोस दे विच कोई यहोजा टैलेंट है जिहड़ा चंगा गाउंदा होवे, लिखदा होवे, तुसी उस दी आवाज़ नू रिकॉर्ड करके भी साढ़े तक पहुँचा सकते हो। सो जेकर तुसी किसी इतिहासिक जगह पर गए हो, उस इतिहासिक जगह के बारे थानू पता है या थोड़े पिंड इतिहासिक थां है तो वो भी जानकारी साढ़े नाल शेयर कर सकते हो। बाकी छुट्टियां दे तुसी कित्थे कित्थे जाने की प्लैनिंग कर रहे हो, क्योंकि गर्मियां की छुट्टियां हो चुकी ने, बच्चे इस वक्त कर रहे हैं, और कित्थे कित्थे तुसी घूमन जाने की प्लैनिंग कर रहे हो या जा रहे हो या फिर कितने जाके आ गए हो, सो ये बाबत भी सानू दस सकते हो। नंबर है 9855 10 10 27। सो थोड़े लिए एक मैं बुजारत लैके

0: मैं कहा जी रात तो गुजर चुकी है, दिन चढ़ गया जनाब। सैटरडे वाली मॉर्निंग का आगाज हो चुका है और स्टूडियो कड़ते समा 9:21 हो रहे हैं और प्रोग्राम चल रहा है थोड़ा सब दा फेवरेट वाला दिल अपना पंजाबी। पंजाब पंजाबी और पंजाबियों दी बातां पाउंदा प्रोग्राम दिल अपना पंजाबी, जिथे तुसी दिल खोल के दिल दीआं गल्लां कर रहे हो अपने टैक्सट मैसेज के जरिए और अपने वॉइस मैसेज के जरिए। पंजाबी विरसे दे नाल जुड़ियां हुईयां, पंजाबी सभ्याचार दे नाल जुड़ियां हुईयां गल्लां बातां तुसी साडे नाल सांझे कर सकदे हो। 9855 10 10 27 साडा नंबर है। एक होर वॉइस मैसेज पहुंचा है, सुनते हैं दोस्त की कह रहे हैं।
1: हेलो दोस्तों, दिल अपना पंजाबी

एंड इसी तरह एक होर फिल्म जो कि बड़ी प्यारी बड़ी खूबसूरत है, और जी तुहानू पता है कि सारियां फिल्मां जिहड़ियां ने ना असीं आम फैमिली दे विच बैठ के देख सकदे सां, क्योंकि थोड़ा बहुत तां शरारतीपन नौटीपन तां हर एक फिल्म दे विच हुंदा है, लेकिन फिर भी ये फिल्मां जिहड़ियां ना फैमिली दे विच देखण लई बणियां सीगियां। सो नैक्सट वाली मूवी है जी कहीं प्यार ना हो जाए कुमार सानू जी होना दी आवाज़ दे विच, अगला ट्रैक।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

प्यार के लिए केड़े लम्हे जां कोई समय हो जाए नहीं हुंदा। और इन्हां फिल्मां दी दौड़ इस तरह लगी है कि या क्या फिल्में हैं ये, मतलब 90s दियां मूवीज़ बेस्ट मूवीज़। और उस समय दे विच भी तुहानूं पता है कि कुछ फिल्मां ने, बहुत सारियां फिल्मां इहो जिहियां सीगियां जिहड़ियां कि दूसरियां फिल्म सीगियां, दूसरियां फिल्म्स नालों इंस्पायर्ड सीगियां। एंड 90s दे दहाके दे विच एक होर फिल्म बनी है जिहदा नाम है सरबतम। दक्षिणी भारत की फिल्म का ये रीमेक हैगा, मतलब दूसरियां फिल्मों नूं हूबहू कॉपी करना, दूसरी लैंग्वेज दे विच, दूसरियां जिहड़ियां भाषा दे विच फिल्मां बनियां हुंदियां ने, जेकर सानूं उन्हां दी स्टोरी डायरैक्टर नूं, प्रोड्यूसर नूं

विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तेल टैंकर अते हमले दे विरुद्ध च अमरीका दे विदेश मंत्री मार्को रूबियो नाल सख्त विरोध जताया है। हमले च तीन भारतीय नाविकां दी मौत हो गई है। भारत अते बंगलादेश ने सरहद दी शांति स्थिरता अते सद्भावना बनाई रखने लई अपनी वचनबद्धता प्रगट कीती है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल रेलवे भर्ती बोर्ड की भर्ती प्रक्रिया संबंधी सीनियर रेलवे अधिकारियों नाल एक उच्च पदरी समीक्षा मीटिंग की है। पंजाब के स्थानक सरकारा मंत्री हरजोत सिंह बैंस वालों लुधियाना नगर निगम खेत्र की अचनचेत चैकिंग सफाई कर्मचारियों नाल गलबात की गई। गुरदासपुर नगर कौंसल चोणां लई अज वोटां पै रहियां ने। पोलिंग सवेरे 8 बजे तो शाम 4 बजे तक होवेगी। मौसम विभाग ने 14 जून तक पंजाब हरियाणा ते केंद्र शासित

0: मुफ्त कानूनी मदद टैली लॉ दी ऐप वेबसाइट www.tally-law.in या टोल फ्री नंबर 1-44-54 तो प्राप्त की जा सकती है।
1: ए, मेरा छोटा भरा है ना बहुत शरारती है। कॉलेज विच मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा नु दिखाउंदा सी। कल मैं लाइट दे बिल ते जीरो अमाउंट वेखी। मैं सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किता होगा, नहीं तो जीरो बिजली बिल किवें पॉसिबल है। पूछया ते आखन लगा वीर जी सब ऊपर वाले दी मेहर है, सोलर पैनल है ना। मैं क्या ओहे ठीक है पुत्र।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़न लई रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in।

और मैंनू पता है कि तुहाडी जिंदगी बहुत वधिया लंघ रही है क्योंकि जी प्रोग्राम चल रहा है होम स्वीट होम जिहदे विच बहुत सारी इनफॉर्मेशन जानकारी तुहाडे तक पहुँचाई जाती है। तो जी गर्मियां जिहड़ियां ने अपने पीक ते ने अपने जोवन ते ने ते पंजाब दे विच 45 डिग्री जिहड़ा टैंपरेचर हो जाता है कदी कदी ते इहदे विच सानू बहुत चीज़ां जिहड़ियां ध्यान देण वालियां ने। सब तो जरूरी है पानी जिहड़ा कि असीं कदी कदी घट पीने ते कदी कदी लोड़ तो वध पी लैने आ। तुहानू पता है कि पानी साडी जिंदगी वास्ते किन्ना जरूरी है। बिल्कुल उसी तरह जरूरी है जिस तरह सानू साडी जिंदगी साह लैने जरूरी है। असी साह लैना नहीं ना भुल सकते, मतलब आते जाते साह जड़े ने सानू याद रहिंदे ने। इसी तरह सानू डेली रूटीन दे विच पानी जड़ा जरूर पीना चाहिए है। और किन्ना पानी पीना चाहिए है? हाँ जी वह भी मैं तुहानू दस रही हाँ, 3 to 4 liter पानी तुसी डेली पीना है। और प्यास लगे ना लगे तुसी मतलब

जी दोस्तों, प्रोग्राम होम स्वीट होम दे विच गर्मी दे बारे किन्नियां सारियां चीज़ां सानू ध्यान रखण दे विच आउंदियां ने, क्योंकि जेकर असीं रोज़मर्रा दी जिंदगी दे विच बाहर जाने आ, साडा डेली रूटीन हैगा काम ते भी जाना ते घर दे काम भी करने, ते कुछ चीज़ां वास्ते सानू स्पैशली इकदम करे गैसट आ जाण ते सानू बाहर जाना पैंदा, ते सानू उहदे वास्ते अपना सब तों पहले ध्यान रखना पैणा है। खाण पीण वालियां चीज़ां दा ध्यान रखना, जिद्दां कि बालां दा तुसीं ध्यान रखिआ कि बाल भी खराब हो सकदे ने धुप दे विच, इस करके अपने आप नूं कवर करके रखना। पेट नूं ठंडा रखण वास्ते तुसीं जी ठंडियां ठंडियां चीज़ां खाणियां, जो कि साडे घर दे विच कई वार आम होंदियां ने, जिवें कि दही ते लस्सी। दही तुसीं एक कटोरी जरूर खाणी एक दिन दे विच, ते लस्सी दा एक गिलास जरूर पिया करो, क्योंकि जे पेट दे बैक्टीरिया नूं ठीक रखदा है, ते लू जिहड़ी जे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है या लग जाती है उहदे वास्ते भी सानूं जिहड़ा लाभदायक सिद्ध होंदा है। ते जेकर किसी नूं लस्सी दा स्वाद पसंद नहीं हैगा, उह की कर सकदा है कि दही दे विच थोड़ा जिहा पानी पा के ना उहनूं चम्मच दे नाल थोड़ा जिहा पतला करके, बहुत गाढ़ा नहीं, उह भी पी सकदे हो जेकर तुहानूं लस्सी दा फ्लेवर पसंद नहीं हैगा। मौसमी फल जिहड़े कि सीजनल फ्रूट्स हैगे, तरबूज, खरबूजा, ते आलू बुखारा जिहड़ा कि बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट घुला घुला हुंदा है ना, वह जरूर खाओ। जामुन दा मौसम जदों आ जाए वह भी जरूर खाओ वाकई जी, और तुहानूं पता है कि जामुन खाण दे नाल बहुत ज़्यादा भुख भी लगनी शुरू हो जाती है। ते पानी ते पीना आपां छड़ना नहीं हैगा। पानी बारे मैं तुहानूं पहले गल कर चुकी हाँ कि पानी तुसीं सिंपल जेकर तुहानूं बाला पीना पसंद नहीं हैगा, ते तुसीं पानी दे विच वी वैरायटी लैके आ सकदे हो। ते जी गर्मियां नूं खाण वालियां हरिया हरिया सब्जियां, लौकी, तोरी, टिंडे, कद्दू, ये ना खाने जरूर चाहिए ने। मैंने पता है कि जिन्होंने दालां पसंद है उन्होंने हरिया हरिया सब्जियां नहीं पसंद आउंदियां। कई कहते हैं कि क्या मम्मा ये रोज़ आप लौकी और तोरी टिंडे की सब्जी बना लेते हो। भई ये गर्मियों की सब्जियां ने, हरिया सब्जियां ने, तरो ताज़ा बनाओ तो खाओ, क्योंकि जी ये हल्के होंगे ने, पचन विच भी तुहानू आसान रहिंदियां ने। ते जी इहदे नाल नाल जेकर हो जाए पुदीने धनिए की चटनी, तो फिर जी स्वाद ही स्वाद है, क्योंकि जी शरीर का तापमान जदों बैलेंस अनबैलेंसड हुंदा है तो फिर इहनूं ना कंट्रोल दे विच रखदी है। तो ज़्यादा तेल मसाला

0: समझाओ, आजकल वो मेरी नहीं सुनती, सारा दिन एफएम रेनबो सुनती रहती है। ऑल डे लिसनिंग एंड लिसनिंग एंड लिसनिंग। गांव वालों, अब मैं जा रहा हूँ एफएम रेनबो लाने। मां कसम, सुनते रहिए
1: 102.7 FM Rainbow। इस बार मैं लगा ही देना। जो बिजली मुफ्त मिलती है ता ले क्यों नहीं रहे वीर, तुसी भी लगा ही दियो।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़न ले रजिस्टर करो PM Surya Ghar.gov.in।

102.1 प्रोग्राम चल रहा जी मिडडे मैलडीज और मिडडे मैलडीज का दौर जो शुरू होता है ना तो वाकई जी उस दहाके उस गोल्डन इरा के जिन्ने भी सोंग ने ना सारे मैलडीज सोंग ने और उस अल्फाज के उस आवाज़ के जो कि लता जी किशोर कुमार जी उन्होंने गुनगुनाए ने उस सदाबहार अपने आप हो गए ने और इसी जिहड़ा मैं अगला गीत तुहानू सुना जा रही ना उसे ते मैनू कुछ लाइना याद आईया ने तेरी सादगी पर दिल मैंने हारा है ए सनम तेरी सादगी पर तो दिल मैंने हारा है तेरी हर बात को दिल से माना है तू ही मेरी पहली और आखिरी चाहत है ए सजन ए सनम तू ही तो मेरी पहली और आखिरी चाहत है तुझ में ही तो मैंने अपना सब कुछ पाया है और तुझको ही मैंने सब कुछ अपना माना है खुदा माना है भगवान माना है और अपना महबूब अपना प्रेमी माना है। प्रोग्राम चल रहा है जी मिड डे मेलोडीज एंड अगला रंग अगली बहार है जी फिल्म सागर जो कि 1985 दे विच रिलीज हुई सी किशोर कुमार जी उन्हों का बड़ा ही प्यारा गीत हैगा चेहरा है या चांद किला जुल्फ घनेरी शाम है क्या ए सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या। तुम देखो ना किन्ने बेहतरीन तरीके दे नाल उन्होंने जिन्ने अल्फाज ने उन्होंने किस तरह पिरो लिया है मतलब सादगी की भी गल करती है अपने प्यार का इजहार भी करता है मौसम बहार की भी गल करती है तो उस सादगी भरे अंदाज दे विच ये एहसास भी दवाया है कि वाकई तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हूँ और मुझे ये तुम्हारा चेहरा हमेशा हमेशा ऐसे ही प्यारा बनाए रखेगा।

और सच में चेहरा है कि चांद खिला है जी। किशोर कुमार जी होना दी आवाज़ दे बच्चे तुसी ये गीत जड़ा है सागर फिल्म दा एंजॉय कीता जी 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से चल रहा सी। ख्वाहिशें इतनी हैं कि कुछ ऐसा मेरा नसीब है, ख्वाहिश इतनी है कि कुछ ऐसा मेरा नसीब है और मेरे नसीब में कुछ ऐसा हो जाए, वक्त चाहे जैसा भी हो बस तू मेरे सबसे सबसे और सबसे ज़्यादा करीब हो जाए जी। और वाकई जी जदों साड़ी ये ख्वाहिश होंदी है कहिंदे कि कोई भी चीज़ नूं तुसीं मैनीफेस्ट करो ना तो वो तुहानूं किसी ना किसी टाइम ते जरूर मिलेगी। सो मैनीफेस्ट करना जरूर चाहिए ते जेकर तुहानूं कुछ लिखण दा शौक है ते तुसीं मतलब लिखना शुरू कर दो तो तुसी भी इदां दे बहुत प्यारे जे शायर बन सकते हो और नाल दी नाल राइटर भी बन सकते हो, क्योंकि हर इंसान दे विच कुछ ना कुछ करन दी कुछ ना कुछ लिखण सोचण दी क्षमता तो हुंदी। सारा दिन असीं बैठ के सोचदे हां ते क्यों ना जो असीं सोचदे हां उहनू कागज़ कलम ते उतार दिता जावे। अगला गीत आशा भोंसले और एक बार फिर तो किशोर कुमार जी हुणां दा संग है उहनां दे साथ दे नाल एक गीत इंजॉय करते हैं जी, ये वादा रहा। और वो वादा जिहड़ा मैं तुहाडे नाल कर रही हाँ इस प्रोग्राम दे विच कि इस प्रोग्राम दे विच मैलोडीज़ मतलब मिठे मिठे प्यारे प्यारे गीत तुहाडे रेडियो सैट्स ते

और सच कहा किसी ने कि किसी के इंतज़ार में जीना और उसको याद करना भी क्या बात है। मतलब ये भी तो एक प्यार है, कोई मिले या ना मिले, मिलने की चाहत हो या ना हो, लेकिन एक तरफा प्यार भी और पूरी ज़िंदगी उसकी याद में बिता देना, ये भी तो प्यार है। मस्त नज़रों से मुझको एक जाम दे दे, एक घड़ी ठहर जा आज की शाम दे दे, जी भरकर आज मुझको जी लेने दे, ऐ दोस्त ऐ हम सफ़र जी भरकर आज मुझको जी लेने दे, मेरे दिल की धड़कनों को थोड़ा सा, बस थोड़ा सा आराम दे दे। 102.7 FM पर आप एंजॉय कर रहे हो जी पंकज उदास का गीत, और इसके बाद एक और गीत उनकी ही आवाज़ में, और आहिस्ता कीजिए बातें। सच्ची में जब प्यार में कोई पड़ता है ना, तो सच्ची में उसका दिल जो है वो कुछ ना कुछ तो कहने के लिए बेकरार रहता ही है।

107 MHz से कंटिन्यू कर दिया जी अपने प्रोग्राम मिड डे मेलोडीज स्टूडियो की खड़ी ते 1:50 19 हो चुके ने। किशोर कुमार और लता जी की आवाज़ दे विच अगला गीत है गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल।

और दोस्तों मेरा तो दिल कह रहा है कि समा बिल्कुल भी मतलब अग्गे ना वधे, मतलब मैनू प्रोग्राम वाइंड अप करन दा समा ना मिले, मतलब एक घंटा इन्ना ज़्यादा लंबा हो जाए, क्योंकि जी गीतां दे नाल नाल तुहाडे नाल सांझ 102.7 मेगाहर्ट्स यानी कि FM रेनबो जलंधर ते जिहड़ी हुंदी ने उह किधरे वी नहीं मिलदी, और ये वाली वाइब्स जिहड़ियां ने दिल करदे कि हर रोज़ हर घंटे होनियां चाहिए ने, पर की करिए समा जिहड़ा है वह इजाजत नहीं दिंदा। सो प्रोग्राम नूं इत्थों वाइंड अप करदी हाँ मैं, ते फिर किसी होर दिन थोड़े नाल मुलाकात होएगी, होर बहुत सारी जानकारी इनफॉर्मेशन ते बहुत सारियां गल्लां दी नाल ते नाल नाल वक्रे गीत होणगे। फिलहाल अज दे लई इन्ना ही, ते इन्ना जिन्ना सी ना ये बहुत बहुत बहुत मैमरी वाला सी, इहनूं याद रखना है। ते जी हुण मैं रणदीप कौर तुहानूं सब नूं प्यार भरी सति श्री अकाल आखदी हाँ, जल्द मिलांगे किसी होर दिन नवीं गल्लां ते नवें गीतां दे नाल। आखर दा ये गीत जिहड़ा कि प्रोग्राम मिड डे मेलोडीज़ दा हैगा, लता मंगेशकर एंड किशोर कुमार जी हुणां दी आवाज़ दे विच, प्यार भरा सफ़र यूं ही चलता रहेगा और हम मिलते रहेंगे नए नए दिनों में।

अपनों से क्या शिकायत, अपनों से क्या बहाना। इदित एक शेर लिखा है कि इश्क है तो जाहिर कर, इश्क है तो जाहिर कर, बना के चाय हाजिर कर, अदरक डाल या दाल, इलाची कूट कर अपनी मोहब्बत भी शामिल कर। सो जिहड़ी महफिल है सजी हुई है ते उड़ीक कर रही है तुहाडे मैसेजेस दी, प्यार भरे मैसेजेस दी, जो कि तुसी भेज सकदे हो सानू साडे व्हाट्सएप नंबर ते। नंबर एक बारी फिर दस देनी आ तुहानू, 9855-10-10-27-9855-101027। राम स्वरूप जी जो कि सुल्तानपुर तो सुल्तानपुर लोधी तो ने एक शेर साडे नाल सांझा करदे ने, लिखदे ने कि अब तो गम सहने की आदत सी हो गई है, रात को छुप छुप के रोने की आदत सी हो गई है, तू बेवफा है खेल मेरे दिल से जी भर के, तू बेवफा है खेल मेरे दिल से जी भर के, हमें तो अब चोट खाने की आदत सी हो गई है। वाह जी वाह। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। बहुत ही सोहनी शायरी तुसी साडे नाल सांझी कीती है ते इदां ही जिहड़े होर दोस्त सानू सुन रहे ने उह वी अपनी लिखियां होईयां या फिर किसी होर दीआं लिखियां होईयां शेर ओह शायरियां साडे नाल सांझियां कर सकदे ने। बस गल इन्नी है कि जे तुसी अपनी लिखी हुई शायरी साडे नाल सांझी कर रहे हो ते बहुत वधिया गल है, जे तुसी किसी होर दी लिखी हुई सांझी कर रहे हो ते नाल अपनी जिन्हां ने उह लिखी है उहनां दा नाम जरूर लिख दिओ। सो पेश कर रही हां अगली गज़ल तुहाडे लई, उह वी बहुत ही प्यारी जी आवाज़ विच, जसप्रीत शर्मा होरां दी।

का जो इशारा मिल जाए। वाह जी वाह, बहुत ही सोहना शेर तुसी साडे नाल सांझा कीता है। ते नहीं होर बहुत सारे स्रोते साडे नाल जुड़े हुए ने, अपनी दिल दीयां गल्लां शेरो शायरी दे रूप विच साडे नाल सांझियां कर रहे ने, ते तुसी भी कर सकदे हो साडे नाल सांझियां। असीं उडीक कर रहे हां तुहाडे मैसेजेस दी, ते पेश कर रही हां तुहाडे लई चंदन दास होरां दी आवाज़ विच बहुत ही प्यारी जी गज़ल।

जुल्फ जमा चश्म आरज लब चेहरा नहीं देखा, जुल्फ जमा चश्म आरज लब चेहरा नहीं देखा, मैंने मुकम्मल चाहा है तुझे कोई हिस्सा नहीं देखा। प्रोग्राम तुसी सुन रहे हो दिल आशायर अपनी दोस्त होस्ट आरज रिया दे नाल, ते महफिल सजी पी है, ते महफिल दे विच साडे जिहड़े कॉलर्स ने ऑडियंस है वह जुड़ी हुई है, ते अपनी बहुत ही सोहनिया सोहनिया शायरियां साडे नाल सांझियां कर रही है। गोपी जो कि रेडू जलंधर तो ने लिखते ने कि रोज़ ही लिख रहा मैं खुद न खुद पढ़ रहा, अपना सा मैं तेरे ना कर रहा, कि यह जिंदगी पर जमाना मैं पढ़ रहा, तनहा रहना औखा मैं नित सूली चढ़ रहा। फिर दूजा शेर लिखते ने कि कमली नाल एक सांझी चाह ना हुई, दूजी सांझी कदे साढ़े नाल निगाह ना हुई, तीजी बुलों तो कदे हां च हां ना हुई, चौथी मारी गई प्यार च होर च होर दी उस नाल पनाह ना हुई। वाह जी वाह, बहुत ही सोहनी शायरी तुसी साडे नाल सांझी कीती है, ते इदां ही तुसी वी जिहड़ी सानू अजे सुन रहे ने ते अपनी शायरियां साडे नाल सांझियां करनियां चाहुंदे ने तुसी जरूर कर सकते हो। नंबर साडा हैगा जी 9855 10 10 27 9855 10 10 27।

सोचता हूँ खुद से मिलूं किसी दिन, सोचता हूँ खुद से मिलूं किसी दिन, फिर सोचता हूँ क्या कहूँगा, कहाँ था इतने दिन। प्रोग्राम तुसी इंजॉय कर रही हो दिला शायर अपनी दोस्त ते होस्ट आज रिया दे नाल, ते जिहदे विच इस प्रोग्राम दे विच बहुत सारियां शेरो शायरियां कवितावां दा पिटारा लैके तुहाडे लई हाजिर हो गई हां मैं अज। जसप्रीत जी जो कि जलंधर तों ने एक शेर साडे नाल सांझा करदे ने, लिखदे ने कि सोचता हूँ फुर्सत मिली तो आएंगे और पिएंगे एक कप हम भी, फुर्सत मिली तो आएंगे और पिएंगे एक कप हम भी, सुना है तुम चाय में इलायची मुँह से तोड़कर डालती हो। आज मैं बहुत ही सोहना शेर तुसी साडे नाल सांझा कीता है, तो तुसी चाह ते इलायची दी गल कर दित्ती है, ते वैसे भी 3 बज गए ने, ते मैनूं लगदा कि चाह पीण दा जिहड़ा टाइम है ना शुरू हो ही गया, ते मौसम भी है ना जिहड़ा बहुत सोहना हो गया, ते सोहणे सोहणे मौसम दे विच जदों शेरो शायरियां सुणन नूं मिलन ते नाल गज़लां सुणन नूं मिलन ते नाल ही नाल मौका मिले अपनी शेरो शायरी साढ़े नाल सांझी करन दा, ते उत्तों सोहणा होर की ही हो सकदा है। ते तुहानूं रस्ता भी दस दिंदे हां कि तुसीं किवें अपनी शेरो शायरी साढ़े नाल सांझी करनी है। साडा वट्सएप नंबर हैगा जी 9855-10-10-27-9855-10-10-27। अमन जी जो कि कपूरथला तों ने लिखदे ने कि तेरा चेहरा तेरी बातें तेरी यादें, तेरा चेहरा तेरी बातें तेरी यादें, पहले इतनी दौलत कहाँ थी मेरे पास। सो बहुत ही सोहनी शेर तुसी साडे नाल सांझे कर रहे हो, ते जिहड़े दोस्त अजे भी उडीक कर रहे ने उडीक ना करो जी, छेती छेती सानू वट्सएप ते मैसेज करो। ते अगली गज़ल जगजीत सिंह होरां दी आवाज़ दे विच तुहाडे लई पेश कर रही हां।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं शिल्पा गुप्ता और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर। तपती धूप, बढ़ता तापमान और बदलती खानपान की आदतें, ऐसे में सबसे ज्यादा असर पड़ता है हमारे पाचन तंत्र पर। अपच, गैस, एसिडिटी, दस्त और भूख कम लगना जैसी समस्याएं इन दिनों आम हो जाती हैं। ऐसे में यूनानी चिकित्सा पद्धति किस तरह पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद कर सकती है, इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। रेडियो डॉक्टर में हमारा आज का विषय है समर्स डाइजेस्टिव इश्यूज एंड यूनानी मेडिसिंस। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यूनानी चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर सैयद अहमद खान, यूनानी एक्सपर्ट। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
3: बहुत शुक्रिया आपका।
2: और साथ है डॉक्टर सूफिया उत्साही, चीफ मेडिकल ऑफिसर, यूनानी मेडिसिंस, CGHS। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
4: बेहद शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हमें आपने याद किया।
2: आप हमारे इस प्रोग्राम को प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पे भी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सुन सकते हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम बात करेंगे गर्मियों में पाचन संबंधी समस्याएं और यूनानी चिकित्सा पर अपने विशेषज्ञों से। तो डॉक्टर सैयद, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि गर्मियों में पाचन संबंधी समस्याएं बढ़ने के मुख्य कारण क्या हैं?
3: असल में सबसे बड़ी वजह होती है बाहर का खानपान और ज्यादा चिकनाई वाली चीजें खाने से। आमतौर से होता क्या है कि गर्मियों में जो है बहुत जल्दी खाना जो है हमारा अगर बासी हो जाता है तो ज़्यादा इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। उसमें जो है डायरिया, डिसेंट्री, वोमिटिंग, इस तरह की कैफियत पैदा हो जाती है। मुख्तसर यह है कि हमें इससे बचना चाहिए। एक तो ज़्यादा तली हुई चीज़ें जिसमें ज़्यादा चिकनाई हो, घी तेल, वो कम इस्तेमाल किया जाए। और बाहर के जो हैं, जो भी आदमी घर से निकला है, उसको ज़रूरत पेश आई, भूख लगी, तो देख ले कि खाना सही है या नहीं सही जगह है। कम खाए लेकिन ताज़ा और सादा खाना खाए, इसकी खास कोशिश की जाए।
2: तो कुछ ऐसी चीज़ें जो वो साथ लेके अपने चल सकते हैं कि अगर हम बाहर का खाना ना खाना चाहें जनरल में वो ले सकते हो?
3: देखिए, सबसे बढ़िया तो ये है कि हमारे यानी नॉर्थ इंडिया में खास तौर से चना और जौ का सत्तू जो है बहुत मशहूर है, और पानी आम तौर से हर जगह मिल जाता है, या फिर पानी भी साथ लेके चले तो आदमी आसानी से उसको इस्तेमाल कर सकता है। ये इस सीज़न की बहुत बढ़िया यानी गजा है, कह लीजिए न्यूट्रिशनल चीज़ है ये। इसका एक बड़ा फायदा यह है कि बॉडी के अंदर जो इस वक्त जो मौसम है वो मिजाज के एतबार से गर्म और खुश्क है, तो ये जो है शरीर को तरी पैदा करता है।
2: जब हम मौसम की बात कर रहे हैं तो डॉक्टर सूफी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस मौसम में सबसे अधिक कौन कौन सी पेट संबंधी समस्याएं हैं जो देखने को मिलती हैं?
4: आजकल तो गर्मी की वजह से काफी प्रॉब्लम्स पेशेंट्स लेकर आते हैं, क्योंकि उसमें लूज मोशन का है, गर्मी लग गई, बहुत ज़्यादा उनको डायरिया हो गया एंड लूज मोशन होते हैं, इस टाइप के पेशेंट ज़्यादा आते हैं, जिसकी वजह से पानी की कमी या पानी नहीं लेते हैं या इन सब चीज़ों को लेना चाहिए। तो इस टाइप के ज़्यादा हमारे पास पेशेंट आते हैं जो कि जिनको गर्मी की वजह से लूज मोशन एंड डायरिया एंड वोमिटिंग इस टाइप से हमारे पास आते हैं, और उनको पानी और ORS, नेबर, लेमन वगैरह इसको एडवाइस किया जाता है कि इसको आप पानी में लीजिए, पुदीना लीजिए, सारी चीज़ों को लीजिए, जिससे उनको थोड़ा सा रिलीफ रहता है। और हमारे पास और भी बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं जिसको हम देते हैं, पुदीने का पानी होता है, अजवाइन का होता है, ये सब चीज़ें हम उनको ऐड करके देते हैं
2: जिससे गर्मी में ठंडक का एहसास रहे,
4: ठंडक का एहसास हो।
2: जी, इसमें हम बात ये भी करेंगे कि यूनानी चिकित्सा पद्धति क्या है और किस प्रकार पाचन तंत्र को संतुलित रखती है, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं गर्मियों में पाचन संबंधी समस्याएं और यूनानी चिकित्सा पर। तो डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि यूनानी चिकित्सा पद्धति क्या है और ये किस प्रकार पाचन तंत्र को संतुलित रखती है।
1: यूनानी चिकित्सा पद्धति सदियों पुरानी, एक साइंटिफिक बेस पर इसको हकीम बुकरात ने, जिन्हें हिप्पोक्रेट भी कहते हैं, उन्होंने इसकी स्थापना की। हालांकि पहले से चल रही प्रचलन तो बहुत पहले से रहा, लेकिन उन्होंने बाकायदे उसको एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, खासतौर से उन्होंने खिलत और मिजाज। तो वो कहते हैं इसका बैलेंस अगर रहता है तो शरीर में कोई तकलीफ नहीं होती, और जब ये डिसबैलेंस होते हैं चारों खिलत और मिजाज, तब जो है जाकर तकलीफ बढ़ती है। जाहिर है गर्मियों का सीजन है, इसमें उमूमन जो है खुश्की और गर्मी, ये दोनों चीज़ें बढ़ी हुई होती हैं। इस लिहाज से हुक्मा इसके यानी जो खास तवज्जो दिया उन्होंने डाइजेस्टिव सिस्टम पर, और उसके लिए उन्होंने माना है कि अगर जिगर हमारा सही काम कर रहा है, लीवर, तो समझिए कि हम बिल्कुल फिट रहेंगे। तो लीवर से संबंधित जो दवाएं हमारे पास में हैं वो बहुत यानी अच्छी तादाद में मौजूद हैं, और इसके बहुत सारे क्लासिकल दवाएं हैं, जैसे माजून दबिलवर्द है, जवारिश नारायण है, जवारिश आमला है, ये सब दवाएं बहुत सारी जिगर की हैं जो काबिज भी हैं, यानी जैसे किसी को डायरिया हो गई या डिसेंट्री हो गई तो उसमें इन दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, खास तौर जवारिश नारायण का बहुत बड़ा रोल है। तो इसी तरीके से जो है इसमें चहार तुख्म का भी इस्तेमाल होता है। चहार तुख्म जो होता है, चार किस्म का बीज होता है, जिसमें यह है कि तुख्म बारतंग है, तुख्म रेहान तुलसी का बीज, इसबगोल मुसल्लम और तुख्म कनौज। तो चारों बीज एक साथ जो है जमा करके किसी को भी पेट में गर्मी है, दस्त है, मरोड़ है, आईबीएस की शिकायत है, उन सूरतों में जो है हम इसे इस्तेमाल कराते हैं। सादे पानी से एक चमचा निगल लिया। इसके अलावा जो है हुक्मा ये मान के चलते हैं कि ये इन्फेक्शन में भी काम करेगा। कई बार ऐसा होता ना कि डिसेंट्री हो गई, इन्फेक्शन के सबब हुई है, तो उसमें हम जो है अर्क अजीब भी देते हैं। अर्क अजीब जो है ये बहुत बेहतरीन फार्मूला है। इसमें जो है सत्य पुदीना है, सत्य अजवाइन है और सत्य काफूर
2: है,
1: इन तीनों को बराबर बराबर मिला लेते हैं, एक बेहतरीन घोल तैयार हो जाता है। इसकी दो बूंद आधे कप पानी में पी लीजिए, तो इससे आपको फौरी तौर पर एक यानी जो भी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, गैस है, डिसेंट्री है, इन्फेक्शन है, उन सब में काम करेगा।
0: तो ये रोजमर्रा में ले सकते हैं या तकलीफ हो तभी इसका

0: तकलीफ हो तो लें
1: जी,
0: क्योंकि जाहिर दवा का मतलब है, दवा और गजा दो अलग अलग चीजें हैं
1: जी।
0: तो इलाज बिलगजा हमारे यहाँ बहुत मशहूर है कि ऐसे वक्त में हम वो चीज खाएं जिससे दवा की जरूरत है पेश आए, तो जाहिर है कि दवा जो है जब जरूरत हो तो भी ली जाए।
1: तो दर्द में ही दवा ले, लेकिन रोजमर्रा में जो ये गर्मी है इससे बचने के लिए हम क्या करें कि जिसे बीमारी ना पड़े?
0: हाँ, इसके लिए तो एक बहुत मोटा सा फार्मूला है, आम आदमी जानता है कि सादा खाओ और ताजा खाओ और कम घी तेल और मसाला इस्तेमाल करो, मौसम के जो फ्रूट्स हैं उसका इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि कुदरत ने जो हमारे लिए एक वरदान तौर पर कह लीजिए हर सीजन में जरूरत के मुताबिक सब चीजें पैदा होती हैं। अब जैसे आजकल खीरा, तरबूज, ककड़ी, ये सब चीजें हैं बदन को तर रखने के लिए। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां मतलब है कि ये सब चीजें नहीं दस्तियाब होती, जैसे आम मान लीजिए, आम बहुत बड़ी नियमत इस वक्त है
1: जी,
0: कि किसी गर्मी लग गई, लू लग गया हो, पेट में कोई खराबी आ गई है, तो वो आम का पन्ना इस्तेमाल करें, आम को उबाला कैरी को
1: जी
0: और उबालने के बाद उसके गूदे को जो है पानी और चीनी नमक मिला करके इस्तेमाल कर सकता है इंसान। और जो लोग शुगर पेशेंट हैं वो चीनी मत मिलाएं, हल्का नमक मिला लिया करें।
1: तो उनके लिए जो शुगर पेशेंट है आम का ऑल्टरनेटिव भी कुछ और है?
0: हाँ, जाहिर है कि उनके लिए तो यही चीज है, लेकिन इसमें चीनी मत मिलाएं, वो थोड़ा टेस्ट से परहेज रखें, नारियल पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब चीजें कुदरत ने हमें हर सीजन के लिहाज से चीजें दी हुई हैं और उसी का हम इस्तेमाल पहले करें ताकि हम दवा से बच सकें।
1: एहतियात बरतने के बाद भी अगर किसी को अपच, गैस या एसिडिटी की समस्या आती है तो उसके लिए यूनानी उपचार कैसे किया जाता है, डॉक्टर सूफिया से हम जानना चाहेंगे।
2: पहली बात तो हमें अपने खाने पीने का बहुत ख्याल रखना चाहिए गर्मियों में, जैसा कि हमें बहुत ज्यादा ऑयल, बहुत ज्यादा मसाले, ये सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए। दूसरी चीज, अगर हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो हमारे यूनानी में बहुत सी ऐसी दवाइयां हैं जो बहुत अच्छा हम असर करती हैं, जैसे पुदीने का एक पेस्ट आता है, जवारिश पुदीना जैसे बोलते हैं, जवारिश तमर हिंदी आती है, वो सब ठंडी दवाइयां जो पेट को बहुत अच्छा वो करती हैं। शरबत में जैसे गुड़हल का शरबत है, शरबत बेलगिरी बहुत अच्छी है, आप दो दो चम्मच सुबह दोपहर शाम भी ले सकते हैं, शरबत की तरह पी सकते हैं उसको, और शरबत अनार भी ले सकते हैं। ये सब चीजें बहुत ही इफेक्ट करती हैं। बस ये है कि हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए गर्मियों में कि गर्मी की वजह से जो जो चीजें हमें ज्यादा हार्म कर रही हैं, बहुत मिर्च है, मसाला है, बाहर की बहुत सारी चीजें, जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए। आजकल पता नहीं कैसे क्या किस तरीके से लोग बनाते हैं, कितने वक्त रखते हैं, फ्रोजन फूड अवॉइड करना चाहिए। मेरे समझ से इन चीजों के लिए हमारी ये मेडिसिन बहुत अच्छी है।
1: तो जो जो आपने शरबत बताई, क्या इनमें से कुछ ऐसा है जो हम रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं?
2: शरबत बेलगिरी है, शरबत अनार है, ये बराबर आप ले सकते हैं।
1: तो ये सभी लोग ले सकते हैं या शुगर पेशेंट्स या शुगर बच्चों के लिए?
2: शुगर फ्री तो इसमें शायद नहीं है, अभी बच्चे ले सकते हैं, जो जिसको शुगर है वो थोड़ा अवॉइड करे, वो कुछ और चीजें से पुदीना है, लेमन है, नमक है, जीरा भुना हुआ डाल के कुछ एक ड्रिंक बना ले, वो ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा उसको कोल्ड करके लिया जा सकता है। गोंदकतीरा का भी बहुत अच्छा इस वक्त इफेक्ट आ रहा है, तुक मलंगा का भी बहुत अच्छा है, उसको भी मिक्स करते हैं भिगो के 4-6 घंटे, उसके बाद उसको आप पानी में मिक्स करके उसको, उसमें पुदीना है, थोड़ा सा लेमन है, ये डाल के आप इस्तेमाल करते हैं। शुगर के पेशेंट जो है वो नमक का यूज कर रहे, काला नमक का यूज कर रहे, बहुत अच्छा रहेगा। गुड़ का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में ले सकते हैं उसको, है ना।
1: गर्मी के मौसम में पुदीना, नींबू सुनने में इतना अच्छा लग रहा, तो लेने में और भी आनंदमय रहेगा।
2: जी जी बिल्कुल।
1: तो डॉक्टर सैयद आपसे जानना चाहेंगे कि अगर फिर भी, अगर कोई, जैसे आपने बार बार कहा कि जंक फूड ना लेकर फिर भी किसी को ने अगर खा लिया और उसको फूड पॉइजनिंग हो गया या कुछ उसकी तबीयत खराब हो गई, तो उनके लिए यूनानी चिकित्सा क्या सलाह देगा, क्योंकि आजकल मौसम ऐसे, ट्रेवल भी कर रहे हैं लोग?
0: बिल्कुल सही है। अव्वल तो हमने बताया कि घरेलू तौर पर जो हम अपने साथ रख सकते हैं, जो चीजें खराब ना हो, उसमें खास तौर से चने और जौ का सत्तू जो है वो नंबर एक पर है। दूसरी चीज ये है, अगर हो ही गया है, तकलीफ आ गई, तो एक तो हमने बताया अरक अजीब का इस्तेमाल है, 2 बूंद अरक जो है आधे कप पानी, 1 कप पानी में लेकर के पी लिया, उससे फौरी तौर पर उसकी वोमिटिंग रुक जाएगी। इसके अलावा यह है कि डिहाइड्रेशन अगर वाकई हो ही गया है, उसे चाहिए कि अपने करीब के किसी हॉस्पिटल से रुजू करें वो, चूँकि हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि डायरिया वोमिटिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है, तो उसको रिहाइड्रेट करने के लिए वो आदमी जो है डिहाइड्रेशन बचे, उस पर हम खास ध्यान देते हैं। और ये जो ORS वगैरह का बताया गया है, धीरे धीरे करके सिप करके पिएं, एक बैग बहुत ज़्यादा नहीं पानी इस्तेमाल करें, या जो कोई भी शरबत हो तो उसका इस्तेमाल धीरे धीरे किया जाए, तो वो जो है डाइजेस्ट होकर के फिर हमें जो कमी पानी की है वो पूरी होती रहेगी। तो ये असल में ज़रूरी है कि उपचार तो उपचार है, इलाज में जल्दबाजी नहीं, और उसमें उसी तरीके से काम किया जाएगा जैसा कि

जरूरत पेश आई। अब किसी को डायरिया और वॉमिटिंग दोनों है तो उसने पहले मरहले में एक तो अरकजीत दे दिया, फिर जवारिश पुदीना आता है, जवारिश पुदीना विलायती कहलाता है, तो उसको इस्तेमाल कराएंगे। ऊपर से फिर हम ये शरबत जो है आपका अनारायण कहा है, शरबत अनार के नाम जाना जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाए। फिर इसके अलावा जो है हब्बे पेच के नाम दवा आती है हमारी, जो यूनानी दवाएं हैं, तो उसमें एक गोली दे दिया या हब्बे सुमाक दे दिया, इस तरह कोई चीज़ आती है दवाएं हमारी यूनानी की, जो क्लासिकल मेडिसिंस हैं, जनरल मेडिसिंस कहलाती हैं, ये हर जगह मिल जाती है आराम से, तो इसका भी हम उस सूरत में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये है कि देखना ज़रूरी होता है कि पेशेंट जो है किस कंडीशन में है इस वक्त, क्या कैफियत उसकी है, उसको फौरन हम हॉस्पिटलाइज करें या फिर घर पर ही उसका इलाज करें, तो उसकी कैफियत देखने पता लगे कंडीशन क्या उसकी है। और ये बहुत बड़ी समझदारी होती है आदमी को कि बर वक्त जो है उसका इलाज किया जाए और कहाँ किया जाना बेहतर है। किसी को मान लीजिए बहुत तेज़ धूप लग गई, सन स्ट्रोक हो गया, लू लग गई, तो ठीक, घर पर जो हमारे उपचार मौजूद है वो तो हमने दे दिया, और उसमें आज के सीजन में ये जो पना आम का

0: यूटिलाइज करें या फिर घर पर ही उसका इलाज करें, तो उसकी कैफियत देखने पता लगे कंडीशन क्या उसकी है। और ये बहुत बड़ी समझदारी होती है आदमी को कि बर वक्त जो है उसका इलाज किया जाए और कहाँ किया जाना बेहतर है। किसी को मान लीजिए बहुत तेज धूप लग गई, सन स्ट्रोक हो गया, लू लग गई, तो ठीक है घर पर जो हमारे उपचार मौजूद है वो तो हमने दे दिया। और उसमें आज के सीजन में ये जो पना आम का जो बताया कि कैरी को उबाल करके उसका गुदा निकाल करके चीनी पानी का घोल बना करके पिला रहे हैं उसे, ORS की सूरत में भी हम दे सकते हैं, ये सब बातें हैं खैर। लेकिन अगर हम महसूस करते हैं कि इसको और ज़्यादा अच्छा उपचार चाहिए तो हम उसको हॉस्पिटल में रेफर कर दें। ये भी एक इलाज का बड़ा हिस्सा है और बड़ी समझदारी की बात होती है।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर।
0: जी
1: हेलो।
2: जी पीपी गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ।
1: जी नमस्कार, बताइए आपका क्या प्रश्न है।
2: डॉक्टर साहिबान को मेरा सलाम पहुँचे।
0: शुक्रिया साहब, बहुत बहुत।
2: हमारे यहाँ यूनानी में अर्क चिकित्सा का बड़ा महत्व है।
0: जी जी बिल्कुल सही।
2: मैंने सुना है कि अर्क मकोए, बहुत सारे अर्क जो है बहुत कारगर है, तो कृपया अर्क के बारे में बड़े तफसील से बताइए।
0: देखिए अर्क जो है ये आमतौर से हम उस वक्त देते हैं जब महसूस हो कि जिगर में सूजन है या जिगर बढ़ गया है, तो उस सूरत में जो अर्क मकोह है, अर्क कासनी है, अर्क ब्रंजासफ है, इसको हम इस्तेमाल कराते हैं। और अगर ये लगता है कि गैस वैस ज्यादा बन रही है तो उसमें अर्क अजवाइन को बढ़ा देते हैं और
3: फैटी लिवर में भी देते हैं।
0: जी जी, तो ऐसी कैफियत में जो है बहरहाल ये जानना जरूरी है कि अर्क का इस्तेमाल कौन कौन से एक साथ किए जाएं। तो ये जो तीन अर्क हमने बताए हैं शुरू में, ये तमाम सारे फैटी लिवर हो या लिवर एनलार्ज हो या और कोई कैफियत है तो, या सूजन आंतों में हो बड़ी में, तब भी देते हैं हम इसे। तो चूंकि इसका असली काम जो है स्वेलिंग को कम करना है और फैट को डिजॉल्व करना भी है, इसीलिए फैटी लिवर में बहुत अच्छा इफेक्ट इसका होता है। तो खास तौर से अगर एक साथ हम चार अर्क इस्तेमाल करें, कासनी, अर्क मको, अर्क बादियान और अर्क ब्रंजासर, तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, जल्दी आएगा। इसको कम से कम यह है 15 ml ईच सभी को जो है, चूंकि तफसील से जानना चाह रहे हैं वो कि हम अरकियात के बारे में, जो अरक का महत्व तो बहुत ज्यादा उन्होंने पूछा बताया समझा भी है और जाहिर है कि ये अच्छा नॉलेज रखते हैं इस सिलसिले में, बड़ी अच्छी बात है। तो इनमें जो है एक कप में हम सभी में से 15 ml जो है, यानी चार चार ढक्कन कह लीजिए, जो बोतल का ढक्कन होता है वो भी एक पैमाना है उसका नापने का, तो उसे चार चार करके एक कप में रख लिया और एक साथ मिलाकर पी लिया। अगर अरक को हम खाली पेट पिए अजवाइन के अलावा तो बहुत अच्छा फायदा रहेगा। जीरे का अरक भी होता है, जीरे का अरक हम देते हैं सुबह नाश्ता के पहले सफूफ मुहज्जिल के साथ, जिसका पेट बढ़ा हुआ हो, फैट ज्यादा हो, उसे कम करने के लिए बहुत कारगर दवा है ये, और ये बहुत ही मशहूर कैलस्कर मेडिसिन है ये। तो हर जो अरक है, अरक नाना जैसा जिक्र किया हमने, अब आजकल सीजन में गर्मी है इसमें हम अरक नाना मतलब कहते हैं पुदीना का अरक, यानी पानी एक तरह का, तो उसे जो है जब हम कशीद करके बोतल में रखते हैं तो उसे अरक बोलते हैं। अरक का मतलब ये है कि उसकी पूरी जो है रूह को कशीद कर दिया, वो सब चीजें उसमें आ गई और उसकी वजह से वो डाइजेस्टिव होता है, एब्जॉर्बल होता है। बॉडी के अंदर कोई चीज हम खा रहे हैं, खाना कमाल नहीं है, उसे कहते हैं पचाना कमाल। पचाने से मतलब यही होता है वो चीज जो है एब्जॉर्ब हो रही नहीं हो रही है, तो ये बड़ा अहम मामला होता है, तो इसको समझना चाहिए। तो जो भी अरक इस्तेमाल करें उसमें ये जानना चाहिए कौन सा किसके लिए है और कब लिया जाए।
1: एक मैसेज है हमारे पास, वो लिखते हैं, डॉक्टर नमस्कार, मैं मेरठ से संजय बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मेरे पित्त की थैली निकल चुकी है और जब से मुझे एसिड और गैस बहुत बनती है और अब तो एक काम और हो रहा है, अगर मैं ठंडा या बासी खाने से पेट फूल जाता है और टाइट हो जाता है, और टमाटर और अचार खाने से पेट में दर्द होने लगता है और नहीं खाता हूं तो ठीक रहता है, डाइजेशन में दिक्कत हो रही है, क्या करूं?
0: हाँ, असल में जो इन्होंने बताया कि गाल रिमूव हो जाने की सूरत में जो लीवर का जूस हमें चाहिए, बाइल जूस इसे कहते हैं, उसके ज्यादा जरूरत भर ना मिलने की वजह से ये होता है कि जो एसिड है ना वो बेस में तब्दील नहीं हो पाती, तो उसकी वजह से इनडाइजेशन की प्रॉब्लम पैदा हो जाती है, किसी को हार्ट बर्न की शिकायत हो जाती है। तो ये बहुत जरूरी है कि जो एसिड बेस का बैलेंस जब नहीं रहेगा बदन में तो फिर ये दिक्कत पैदा होती है। इसमें जो दवा इनको इस्तेमाल करनी है बहुत ही कॉमन मेडिसिन है, हर जगह मिल जाएगी और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो इससे पूरी तरह से फायदे में रहेंगे। वो ये है माजून दबीदुल वर्द, माजून दबीदुल वर्द। तो दबीदुल वर्द जो है ये 5 ग्राम और ऊपर से जो है अर्क कासनी, अर्क मकोह 15 ml, ये खाली पेट सुबह नाश्ता के पहले, शाम खाने से पहले इस्तेमाल कर लें। इसके अलावा ये है कि शाम को सोते समय इन्हें चाहिए कि उस वक्त जवारिश शाही 1 चमचा शाम डिनर के बाद ले लिया करें, ये तो बिफोर है,

0: माजून और अरक, और इसको लेना हमें आफ्टर डिनर, तो ठीक रहेगा इनको।
1: एक कॉलर भी हमारे साथ लाइन पर, जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे श्रोता। हेलो,
2: हेलो मैडम जी, नमस्कार।
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: डॉक्टर साहब को भी नमस्कार, दोनों को।
0: हाँ भाई, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।
2: डॉक्टर साहब, मेरा नाम संजीव कुमार है, मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ, गाँव करनाल है जी।
0: जी
1: जी बताइए।
2: अच्छा सर, मेरा भाई है छोटा मेरे से, उसकी 42 साल उम्र है, और उसको जो है ना भूख नहीं लगती, और वो 2009 से यानी 17 साल से मेंटल इलनेस की दवाई खाता है सर, और रोटी बिल्कुल नहीं खाता, ठीक तरह से नहीं खाता, मतलब थोड़ी बहुत ही खाता है जी, तो क्या किया जाए उसको? और मेरी प्रॉब्लम, मैं अपनी प्रॉब्लम बताता हूँ सर।
0: ठीक है भाई, के लिए जो है आप जो है जवारिश तमर हिंदी ले लीजिए, जवारिश तमर हिंदी, तमर TMAR, तमर यानी तामारा, जवारिश तमर हिंदी, ये आधा आधा चमचा सुबह शाम खाली पेट उनको दीजिए, और खाने के बाद उनको हब्बे कबीर नौशादरी दीजिएगा, दो दो गोलियां। आवाज़ शायद इनकी अब डिस्कनेक्ट हो गई है। बहरहाल वो भाई को उनके हमने बता दिया, वो दवाओं की जो खुश्की होती है, जो अंग्रेजी दवा हम खाते हैं आमतौर से, उसकी खुश्की ज़्यादा पैदा हो जाती है, उसकी वजह से दिक्कतें पैदा होती हैं। खैर, तो ये दवा जो है जो हमने उनको बताया, तो उससे उनको राहत मिलेगी।
1: आज रेडियो डॉक्टर में जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि समर्स डाइजेस्टिव इश्यूज एंड यूनानी मेडिसिंस पर, हम आपसे ये भी जानेंगे कि कुछ ऐसे नुस्खे हैं क्या जिन्हें लोग आसानी से अपना सकते हैं जिससे सभी की समस्याओं का समाधान हो जाए, इस पर हम और भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं समर्स डाइजेस्टिव इश्यूज एंड यूनानी मेडिसिन पर। इस पर अभी हम जानेंगे कि यूनानी मेडिसिन में ऐसे कौन से नुस्खे हैं जिसे हम आसानी से अपना सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक श्रोता है हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
2: अस्सलाम वालेकुम।
3: जी वालेकुम अस्सलाम।
2: हाँ जी, कस्बा किठौर जिला मेरठ से बोल रहे हैं जी, सलाउद्दीन।
3: शुक्रिया साहब, फरमाएं।
2: सर मेरे अभी करीब एक साल हुआ तो मेरे वो निकल आई थी हरफीस।
3: जी जी।
2: तो मैंने ये आपके जो यूनानी से ही दवा खाई, अल्लाह का शुक्र है उससे बहुत फायदा हुआ मुझे, एक साल हो गया।
3: जी जी।
2: तो ये दाने दाने से थे, तो इसमें हमारे लिए उन्होंने एक तो मरहम लिखा था, मरहम है सफेद काफूरी।
3: जी जी बिल्कुल ठीक।
2: और एक इसमें था हमारा ये शरबते उन्नाब।
3: जी।
2: और एक थी इसमें माजून ने दवद दवल दर्द,
3: माजून दबीदुल वर्द था। ठीक है
2: जी। हाँ ये तीन चीजें थी सर। तो मैं ये मालूम करना चाहता हूँ, अब जैसे ये गर्मी पड़ी है मुझे, इसमें खुजली सी दोबारा लगने लगी है, क्यों फिर ये दोबारा यही दवाई खाई?
3: नहीं, अब आप माजून ने उशबा ले लीजिए।
2: माजून ने
3: उशबा,
2: मुशबा। अच्छा,
3: उशबा ऊ बड़ा सा और बा उशबा।
2: हाँ मुशबा। अच्छा,
3: माजून उशबा हो जाएगा और साथ में जो है शरबत उन्नाब लेते रहिएगा।
2: जी जी जी।
3: और अगर कहीं आपको
2: जी
3: नीम के फूल मिल जाए, फूल
2: नीम के,
3: हाँ, या नीम का तेल मिल जाए।
2: जी जी।
3: तो ज्यादा अच्छा है, नीम के तेल इस्तेमाल कीजिए, आसानी से मिल जाता है।
2: अच्छा हाँ, क्योंकि मैं अभी

0: गाजियाबाद गया था, वहाँ यूनानी बहुत अच्छा अस्पताल है, वहीं से ही दवा चली थी
1: जी
0: मेरी।
1: जी बिल्कुल ठीक है, गाजियाबाद में जो
0: जी
1: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन,
0: जी जी हाँ
1: तो वो है, बहुत अच्छा है, वहाँ से आपने सही जगह आप गए, और जाहिर है कि ये भारत सरकार का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है
0: हाँ
1: यूनानी का।
0: जी मैं हाँ उसी से ही मुझे बताया था उस टाइम में किसी ने कि भी वहाँ चले जाओ,
1: नहीं
0: ये
1: नहीं अच्छा
0: बहुत
1: किया, और अब
0: अच्छी
1: फिलहाल
0: है।
1: आप नहीं ले लो, काफी रहेगा।
0: ठीक है जी, शुक्रिया जी। और आप आते हैं जी डॉक्टर के, उसमें यहाँ प्रोग्राम होता है, बहुत अच्छा लगता है सभी को जानकारी,
1: जी,
0: जितने
1: इसमें
0: भी हमारे,
1: आकाशवाणी का बेहद शुक्रिया।
0: हाँ जी जितने भी हमारे साथी सुन रहे हो भाई, हम उनकी तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं।
2: जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक मैसेज भी हमारे पास, वो लिखते हैं दोनों डॉक्टरों और एंकर मैम को गुड आफ्टरनून। वो पूछते हैं कि यूनानी चिकित्सा में मानसिक स्वास्थ्य को दुरुस्त रखने के लिए क्या खान पान व कौन सी दवाएं ले सकते हैं, कृपया बताने की कृपा करें। नरदेव सिंह चौहान, कोटद्वार, उत्तराखंड।
1: जी, काफ़ी अच्छा सवाल इन्होंने किया, हालांकि आज का प्रोग्राम जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम पर है, लेकिन जाहिर है कि इससे रिलेटेड भी है, तो खाने पीने में ख्याल रखें, समय से खाएं और नींद पूरी लें। इसके लिए एक खमीरा आता है, खमीरा गाव जबान अंबरी जदवार उदय सलीब वाला, एक बार और बोल देता हूँ, लिख लीजिए, खमीरा गाव जबान अंबरी जदवार उदय सलीब वाला, ये रोज़ाना 5 ग्राम सोते वक्त इस्तेमाल करें, और सुबह सवेरे जो है दवाउल मिस्क मोतदिल जवाहर वाले आधा चमचा, इसका इस्तेमाल लगातार कम से कम 6 महीना कीजिए, जिससे काफ़ी आपको सुकून मिलेगा और दिमागी तवाजुन भी अच्छा बनेगा। और ये है कि खाने पीने में ख्याल रखें, कब्ज़ ना होने पाए और गैस कम बने। आप जो कुछ हम खाते पीते हैं, हमें अंदाज़ा हो जाता है एक उम्र के साथ कि हमें क्या चीज़ नुकसान कर रही है, क्या फ़ायदा कर रही है, उसी लिहाज से अपना खाना पीने का चयन करें तो अच्छा रहेगा।
2: एक और मैसेज है हमारे पास, वो लिखते हैं डॉक्टर साहब, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट एंड बर्निंग मैच्योरेशन के लिए यूनानी चिकित्सा बताएं, अनिल गुरुग्राम से।
1: जी, इन्होंने ये नहीं लिखा कि ये शुगर पेशेंट हैं या, बहरहाल अगर शुगर पेशेंट हैं तो उनके लिए शरबत बजूरी SF के नाम से आजकल आ रही हैं, कुछ कंपनीज बना रही हैं जो शुगर फ्री है, लेकिन जो शुगर फ्री, जिनको शुगर नहीं है उनके लिए अच्छी बात यह है कि वो शरबत बजूरी मोतदिल, ये क्लासिकल मेडिसिन यूनानी की हर जगह मिल जाएगी, दो दो चमचा सुबह शाम नाश्ते के बाद शाम खाने के बाद इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो है माजून दबीदुलवर्द, ये सुबह शाम में लंच और डिनर से पहले 5 ग्राम, और बिफोर ब्रेकफास्ट जो है माजून फलासफा 1 चमचा इस्तेमाल करेंगे, तो इससे कुछ दिनों के बाद उनको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। अलबत्ता यह है कि माजून दबीदुलवर्द के साथ साथ जो है वो अरक कासनी, अरक मको और अरक ब्रंजासा भी इस्तेमाल करें।
2: एक और मैसेज है हमारे पास, वो लिखते हैं डॉक्टर साहब नमस्ते, हमें गैस बहुत बनती है और पेट गुड़गुड़ करता है, क्या करें। प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से।
3: पहली बात तो ये रहेगी कि आप खाने पीने में कैसे खा पी रहे हैं, उसकी वजह से आपको क्या प्रॉब्लम ये हो रही है, कुछ ऐसी चीज़ें खा रही जिससे गैस ज़्यादा आपको बन रही है, उसके लिए हमारे पास बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। एक तो हब्बे कबित, सुबह शाम दो दो टेबलेट ले सकते हैं, गोली ले सकते हैं आप, और जवारिश में आप जवारिश शाही ले सकते हैं आधी आधी चम्मच सुबह शाम, और एक टेबलेट और ऐड कर सकते हैं हब्बे हल्दी, जो कि हींग की गोली होती है, दो दो टेबलेट सुबह शाम आप ले सकते हैं। और पानी का ध्यान रखें, सोने का ध्यान रखें, खाने में बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला ऑयली चीज़ों को अवॉइड करें।
2: एक और मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं नमस्ते गुड आफ्टरनून डॉक्टर साहब एंड FM रेनबो टीम को, मैं नीता अमरावती से। ये लिखते हैं मैं FM रेनबो के प्रोग्राम सुनती रहती हूँ और हेलो डॉक्टर प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें सभी परेशानियों का इलाज हो सकता है और सेहत के बारे में जानकारी भी मिलती है। तो ये कहते हैं कि इनको है ना अलग अलग भाषा का, मतलब अलग अलग स्टेट्स का खाना खाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसी तकलीफ नहीं हुई है, लेकिन कभी कभी ने डर भी लगता है कि सुबह का खाना शाम को खाती हैं तो कभी कोई बीमार ना पड़ जाए, तो के ऐसे में हम क्या करें कि जिससे बीमार ना पड़े और सही रहे।
1: जी, काफ़ी अच्छा सवाल है इनका, और जाहिर है कि अगर उनका पेट ठीक है तो बहुत सी बीमारियों से खुद ब खुद बच सकते हैं वो। इन्होंने जैसा कि काफ़ी सैलानी टाइप का सवाल किया, इन्होंने तमाम सारे स्टेट्स के अलग अलग फूड्स हैं, तो अच्छी बात है, इनको तजुर्बा भी अच्छा है, लेकिन यही ख्याल करें कि हर इलाके का जो भी, वो कहते हैं ना कि एक रवायती खाना जिसे कहते हैं, जैसे बिहार में चले गए आप तो वहाँ के लिट्टी चोखा बहुत मशहूर है, तो यकीनन वो बड़े काम का होता है और लोग खाएं तो उससे कोई नुकसान नहीं है। हमारे राजस्थान में दाल बाटी चूरमा वगैरह बहुत मशहूर है, ये मज़बूत खाना भी है, उसमें यह है कि घी थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कई बार लोग, घी का इस्तेमाल कम किया जाए, और

0: जहाँ सवाल ये कि दिल्ली तो यानी समझिए कि भारत की राजधानी है, तो यहाँ तो हर तरह का खाना मिलता है, तो उन जगहों पर खाना खाया जाए। अगर कोई आदमी टूर पर निकला हुआ है तो सोचे कि मुझे कहाँ खाना चाहिए, तो वो ख्याल रखें कि जिस जगह होटल पर भीड़ ज़्यादा हो तो उन होटलों पर खाएं तो अच्छा रहेगा। उसकी वजह क्या है, वहाँ आम तौर से महसूस कर लिया जाएगा कि ज़्यादा
1: लोग खा चुके
0: खा
1: हैं या खा
0: चुके
1: रहे
0: हैं और
1: हैं।
0: खा रहे हैं, ताज़ा हो रहा होगा, ज़रूर खाना ताज़ा मिलेगा।
1: ये तो आपने हमें बताया कि जनरल में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और कैसे लेना चाहिए। तो डॉक्टर सूफी आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चे, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के बचाव के लिए यूनानी उपचार कैसे करें। सबसे पहले तो बच्चों के लिए बताइए कि बच्चे क्योंकि दिन भर काम करते हैं, स्कूल में पढ़ाई भी करते हैं, बाहर गर्मी में खेलते भी हैं, तो उनके बचाव के लिए क्या करें।
2: उनको जब भी देखें कि ज़्यादा बाहर से खेल के आए हैं, ज़्यादा कुछ ऐसा उनको थकान है कुछ है, तो कुछ घर में ऐसा ड्रिंक बना लें जैसे शुगर है, नमक है, लेमन है, ये चीज़ें बना के उनको ये दें। और इसके अलावा हमारे पास शरबत होता है, शरबत अनार है, आंवला है, आमला है, शरबत आंवला एंड शरबत अनार ये दे सकते हैं। और एक ड्रिंक बना के रखें, जैसे जिसको ORS की ही उसको एक शक्ल कही जाएगी, जिसमें कि लेमन है एंड नमक एंड शुगर मिला के थोड़ा सा जीरा भुना हुआ डाल दें, उसको दे सकते हैं, पिला सकते हैं उसको पानी में डाल के। आंवले का शरबत बहुत अच्छा इफेक्ट करेगा इस वक्त, उसको भी दें। और इसका भी बहुत, अगर उसको कभी ऐसा लगे कि हाँ लूज मोशन या कोई ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो रही है पेट की, तो शरबत बेलगिरी भी ऐड कर सकते हैं, दो दो चम्मच। सारी चीज़ें बहुत ही बेहतर बेहतरीन रहेंगी। रही बात प्रेगनेंसी में, तो प्रेगनेंसी में वैसे भी मेडिसिन थोड़ा अवॉइड करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी अगर उसको कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो वही वही चीज़ जो हमारे पास जवारिशे तमरहिंदी बहुत अच्छा इफेक्ट करती है, और हींग की गोली आती है जिसको हल्तीत बोलते हैं, है ना, उसको दो दो गोलियां दे सकते हैं, उसके लिए बेहतर होगा। पानी वक्त पे पिए और शरबत आंवला और शरबत अनार ये सब चीज़ें लेती रहे, इससे बहुत बेहतर
1: और
2: बेहतरीन रहेगा।
1: बुजुर्गों के लिए क्योंकि कई बार तो एकदम सर्दी होती है, कई बार एकदम गर्मी होती है, तो बदलते मौसम में कई बार बीमार पड़ जाते हैं, तो बुजुर्ग क्या करें।
2: बुजुर्गों के लिए तो भी यही सारी चीज़ें हैं, बट थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि इसमें हमें लीवर की मेडिसिन थोड़ा ऐड करके रखना चाहिए बुजुर्गों के लिए। माजून दबी दिवर देना चाहिए उनको, जवारिशे पुदीना विलायती देना चाहिए, एंड यही जैसे गोन कतीरा है, चिया सीड, इन सब चीज़ों का वो थोड़ा सा शरबत बना के वो लेते रहें, पीते रहें। गुड़ का भी यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है, गुड़ भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है इन सारे शरबतों में। शक्कर ना यूज़ करके, शुगर ना यूज़ करके गुड़ का ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना जी।
1: एक मैसेज भी हमारे पास, वो लिखते हैं, सर मुझे गर्मियों में लूज मोशन की शिकायत रहती है 15 दिन में, तो सर यूनानी चिकित्सा में कोई इसका इलाज है।
0: जी, काफ़ी अच्छा सवाल इन्होंने किया है। एक तो यही है कि जवारिश अनारायण का इस्तेमाल ये सुबह नाश्ता के पहले आधा चम्मच सादे पानी से कर लें, ये काफ़ी बेहतर रहेगा। और चूंकि गर्मियों में ख़ास तौर से उनको शिकायत रहती है, तो खाने का ख़ास ख्याल रखें, उसमें बाहर की तली हुई चीज़ें जो आजकल फैशन में मोमोज वगैरह तमाम सारी चीज़ें हैं, जंक फूड्स वगैरह, उसका इस्तेमाल कम करें। और जो सीज़न में कुदरत ने हमें दिया है, आम का इस्तेमाल है, केला है, पपीता है, अनार है, ये सब इस्तेमाल करें, अनानास है, इसमें जो उनको मिल जाए आसानी से कोई एक फल ज़रूर लिया करें, क्योंकि ये जो मौसमी फल है ना, कुछ तो सदाबहार फल है, जैसे अनार है हमेशा मिलता रहता है, पपीता हमेशा मिलता रहता है, अनानास है ये भी आमतौर से मिलता रहता है, ये सब डाइजेस्टिव भी हैं और काबिज़ भी हैं, तो उनको जो लूज मोशन शिकायत दूर हो जाएगी इससे। इसके अलावा यह है कि वो एक गोली रात को सोते वक्त हब्बे सुमाक, सु मापरा का और का सुमाक, एक गोली रात को सोते समय ले लिया करें, ये बहुत काफ़ी उनके लिए रहेगी। इसके अलावा डॉक्टर सुफिया हुसैन ने बहुत सारे मशरूबात का जिक्र किया है, शरबत आमला है, शरबत अनार है, सब इस्तेमाल करें बहुत फ़ायदा रहेगा। शरबत बेलगिरी है, ये काफ़ी हमारे यहाँ चलन में है, लोग यूज़ करते हैं, बेल का मुरब्बा भी लोग इस्तेमाल करते हैं सुबह नाश्ते के बाद, थोड़ा सा ले लिया ज़्यादा लेकिन ना लें, ये ख्याल रहे, चूँकि इन सब का मिजाज ठंडा होता है, तो ज़्यादा ले लेने में ये नुकसान होगा कि हमें बदन में दर्द भी हो जाएगा और ज्वाइंट वालों को खास तकलीफ पड़ जाएगी, तो इसीलिए डॉक्टर के मशवरे से ही दवा ली जाए। कितना लेना है ये ज़रूरी है जानना, 10 ग्राम ज़्यादा ना होने पाए।
1: सही मात्रा में लेना भी आवश्यक है।
0: जी जी
1: जी इस पर हम और भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं समर्स डाइजेस्टिव इश्यूज एंड यूनानी मेडिसिन पर। एक मैसेज हमारे पास ये लिखते हैं, हाय हियर रिंकू, याददाश्त बढ़ाने के लिए यूनानी मेडिसिन में दवाई है सर, तो बताएं।
1: बहुत अच्छी दवा यूनानी में है। एक तो खमीरा गौजवान अम्बरी जवाहर वाला, ये सुबह सवेरे रोजाना इस्तेमाल करें वो। और अगर ये महंगा लगे तो इसका खमीरा गौजवान सादा भी आता है, तो सुबह नाश्ते से पहले एक चमचा इसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो है, जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसमें एक अदद अखरोट का इस्तेमाल करें। ये एक अखरोट रोज़ाना यूज़ करना, एक से ज़्यादा नहीं। या 5 बादाम रात को भिगो दिया, सुबह छील करके उसका छिलका निकाला, फिर उसको इस्तेमाल किया। लेकिन इन सब को खाने के लिए थोड़ा सा वक्त दें, अच्छी तरह से चबाएं, क्योंकि अब ये मौका तो लोगों के पास है नहीं कि सील पर घिस करके इस्तेमाल करें।
0: जी
1: हालांकि बादाम घिस कर पहले इस्तेमाल किया जाता रहा, बड़ी फुर्सत रहा करती थी, तो चलिए कम से कम, मगर इतना मौका नहीं है, देर तक उसे चबाएं। तो ये दो चीज़ का इस्तेमाल करें तो इनकी याददाश्त अच्छी रहेगी। और इसके अलावा भी बहुत सारे क्लासिकल मेडिसिन यूनानी में मौजूद हैं, लेकिन ये बहुत आम दवा है जो हर जगह मिल जाएगी, दवा भी और ड्राई फ्रूट भी।
0: ये तो आपने बताया कि क्या हम ले। एक मैसेज हमारे पास आया है, वो लिखते हैं, डॉक्टर साहब मेरा सवाल है कि आप मुझे वेट कम करने के लिए कुछ बताएं, पेट बहुत भार हो गया है। आसिफ सैफी फ्रॉम मेरठ।
1: एक तो यह है कि इन्हें जो नॉनवेज है उसका इस्तेमाल कम करना है। इसी के साथ जो है, कटहल, गोभी, बैगन, अरवी, राजमा, उड़द, पूड़ी पराठे, इसका इस्तेमाल भी कम करना है, जितना कम हो अच्छा है। दूसरे, सफूफ मुहज़्ज़िल और अर्क ज़ीरा, ये सुबह सवेरे नाश्ता से पहले, जब भी नाश्ता करने बैठे पहले इसको इस्तेमाल करना। एक चमचा सफूफ मुहज़्ज़िल और ऊपर से 4 चम्मच, बड़ा 4 चम्मच ज़ीरे का पानी, वो इस्तेमाल कर लिया करें। इसके अलावा यह है कि ये खाने में सुबह शाम खाना खाने के बाद जो है, हब्बे कबीद नौशादरी 2 गोली इस्तेमाल कर लिया करें, इससे उम्मीद है। और सलाद का इस्तेमाल ज़रूर करें,
0: जी
1: सलाद या मौसम का कोई फ्रूट, जो फ्रूट इनको अच्छा लगे वो खा लिया करें।
0: लेकिन जैसे कि कई लोग होते हैं कि डायबिटिक हैं और साथ में उनको अल्सर की भी प्रॉब्लम हो गई, तो डॉक्टर सूफी आपसे जानना चाहेंगे तो वो क्या करें, क्या लें, अगर डायबिटिक भी है और अल्सर भी है, क्योंकि उसमें वॉमिटिंग और लूज मोशन की भी कई बार शिकायत आ जाती है साथ में।
2: उसमें आप हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी मेडिसिन आती है अल्सरेशन के लिए। एक तो अगर आपको माउथ में हुआ है, अगर माउथ में हुआ है तो हमारे यहाँ जरूर कुला करके एक बहुत अच्छी मेडिसिन आती है, वो ले सकते हैं। अर्कियात भी ले सकते हैं, इसमें अर्क मको और अर्क बादियान, अर्क कास्टी, वो ले सकते हैं, उससे बहुत अच्छा।
0: और अगर पेट में अल्सर है डायबिटिक के साथ,
2: उसमें भी अर्कियात का ही इस्तेमाल करेंगे हम ज़्यादातर, क्योंकि उसमें हम मीठी, ये दवाइयाँ हमारी मीठी होती हैं, इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं, या तो टेबलेट फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में देते हैं, या फिर जो है अगर उसको नहीं है शुगर तो फिर तो उसे मीठी ही दवा दी जाएगी। इसमें कैप्सूल वगैरह भी दे सकते हैं हम, जिग्रीन हमारे पास बहुत अच्छी आती है ना, और बाकी हबे कभी दे सकते हैं, ये दे सकते हैं, और बहुत सी ऐसी मेडिसिन है जिसको हम शरबत के भी उसमें दे सकते हैं शक्ल में। अगर शुगर है तो फिर सिर्फ अर्कियात पे डालेंगे एंड टेबलेट पे डालेंगे, और अगर शुगर नहीं है तो मैं उसमें माजून और जवारिश भी ऐड कर सकती हूँ, है ना। माजून दबीदुलवत का बहुत अच्छा इफेक्ट है, उसको ज़रूर देना चाहिए। इसलिए अर्क के साथ अर्क अजीब वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें पानी में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं जी।
0: तो कई बार होता है कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं, किसी को भूख लग रही होती है, किसी को नहीं लग रही होती है, और किसी को डाइजेशन नहीं हो रही होती है, तो उन तीनों केसेस में क्या क्या करना चाहिए, उसके लिए यूनानी चिकित्सा क्या है?
1: हाँ, यूनानी में असल में अगर वाकई भूख नहीं लग रही है तो हम उसका काज देखते हैं कि क्यों नहीं लग रही है। लीवर में गड़बड़ी है, या उसके आंतों में गड़बड़ी है, पेट में कोई खराबी है, एसिडिटी ज़्यादा है वगैरह। इसमें हमारे यहाँ जैसा कि बताया, जवारिश तमर हिंदी के साथ एक गोली आती है, हब्बे कुर्स तुरश मुश्तही, तुरशे मुश्तही कहते हैं उसे, मुश्तही मतलब इश्तहा यानी भूख लगाना, वो गोली होती है, खाना खाने के बाद 2-2 गोली देते हैं उसको। इसके अलावा हम मेन काज पर जाते हैं, ये देखते हैं उसको असल वजह क्या है भूख ना लगना, तो वे दूर करने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये दवा जो है, जैसे कि दवाएँ वो दी जाती हैं कि फौरी तौर पर उसके लिए काम आए, जैसे बुखार है किसी को, थबे बुखार दे दिया पहले कि भाई बुखार उसका उतरे, थोड़ा आराम मिले, क्यों हुआ वो बात की चीज़ है, वो देखा जाएगा। तो ऐसे ही है, भूख ना लगना ये एक बीमारी है, एनोरेक्सिया, सीधी सी बात है कि उसका हमें काज देखना पड़ेगा कि वजह क्या है। जिगर कमज़ोर में आमतौर से ऐसा होता है, और कई मरतबा ऐसा होता है कि जो है वो डाइजेस्टिव जो एंजाइम

0: टाइम्स हैं उसका सिक्रेशन कम होता है, तो देखना जरूरी होता है। हमारा खाने के जो सोचना ही चाहिए कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा वो मुंह से शुरू हो जाता है, सलाइवरी ग्लैंड्स है ना, तो उससे सलाइवा लार, सराल या लार जो भी बोलते हैं लोग अपने जबान में, इलाके वाइज मशहूर है। तो जब हम, इसीलिए कहा गया खाना चबा चबा के खाओ, तो जो कुछ हम खाएंगे तो देर तक चबाएंगे, तो चबाने में वो जो सलाइवरी ग्लैंड्स है ना वो अपना पूरा काम करेंगे, सिक्रेशन अच्छा होगा और वो लपेट भी देगा उसे, तो वो आधा सिस्टम शुरू हो गया, यही आधा डाइजेस्ट होगा सह लीजिए। फिर वो जाएगा नीचे मैदे के अंदर, स्टमक में, स्टमक में जो जाते ही जो है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, वो उस बाहर से आए हुए फूड को, हमारे जो भी हमने खाया इनटेक किया, उसको जो है वो क्या करता, दो काम करता कि अगर खराब है किसी किस्म वजह से तो उसको तेजाबियत में लग रख करके यानी शुद्ध कर देता है, जैसे आग जला देती है ऐसे ही उसका काम यही है, दूसरे सड़ने से बचाए। ये दो काम है तेजाब का, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे यानी मैदे में निकलती है खाते फौरन कुदरती तौर पर, जैसे हमने मुंह में रखा निवाला ऑटोमेटिक सलाइवरी ग्लैंड्स एक्टिव हो गई, सलाइवा आ गया, ऐसे ही जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी तो HCl वो निकलना शुरू हो जाता है।
1: तो कुछ ऐसे यूनानी नुस्खे हैं जिन्हें हर कोई अपना सकता है और अपनाकर दुरुस्त रह सकता है, डॉक्टर सूफिया?
2: आदमी खाने पीने का ख्याल रखे और फ्रेश खाना खाए, रात का रखा हुआ या कई दिनों का रखा हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए ये सब चीज़ें। कोशिश ये करना चाहिए कि हमारा लीवर अगर सबसे बेशकीमती है तो उसको अच्छा बना के रखेंगे, उसी से सारी चीज़ें होती हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम आती हैं पेट की। तो नुस्खों में तो आप ये है कि जवारिश वगैरह ही दे सकते हैं एंड मक्को दे सकते हैं, सफ़ूफ़े हाजिम हमारे पास एक बहुत अच्छा आता है, नमक शेखुल रईस बहुत अच्छा आता है जो कि आप सलाद पे डाल के खा सकते हैं, फ्रूट का इस्तेमाल अच्छे से करें आप, और खाने का जो भी खाना आप खाएं वो फ्रेश होना चाहिए, उसके अलावा उसमें मिर्च मसाले का बहुत परहेज़ होना चाहिए। कोशिश यही होनी चाहिए कि हमें जो घर में चीज़ें हों उसका ही इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, बाहर की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए।
1: और डॉक्टर सैयद, आप कुछ बताएंगे कि कुछ ऐसी चीज़ जिससे हम अपने डाइजेशन को मजबूत बना सकते हैं, क्योंकि क्या खाएं क्या ना खाएं वो तो सब बता दिया,
0: जी
1: लेकिन
0: सर,
1: डाइजेशन मजबूत कैसे बनाएं?
0: बस इसमें यह ख्याल रहे कि हमारा लीवर जो है, जो सदियों से हुक्मा ने यह सिफारिश की है कि डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहे, उसके लिए लीवर यानी जिगर का सही होना बहुत ज़रूरी है, तो उसका ख्याल रखें। इसके अलावा जो है आदत में किसी दवा का इस्तेमाल ना रखें, लेकिन ज़रूरत पर सफ़ूफ़ हाजिम यह बना बनाया भी आता है, हम बना भी सकते हैं घरों में। जैसे उसमें जो अहम जुज़ है वो है सौंफ का, अजवाइन का, जीरे का, जीरा दो तरफ सफ़ेद और काला होता है, दोनों ले लिया जाए, नमक काला हो, और जो हम नमक खाते हैं नमक खुरदनी कहते हैं उसे, नमक लाहौरी, इन सब का मिक्सचर बना करके हम वज़न कहते हैं बराबर बराबर, जैसे 10-10 ग्राम ले लिया सबको, उसमें काली मिर्च है वो ले ली जाए, इसका एक पाउडर बना के रख लें हम, तो ये चीज़ जो है बहुत बेहतरीन डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए रहेगा, ये हम इस्तेमाल करें और सलाद का इस्तेमाल ज़रूर रखें।
1: वैसे समय हमारा जाने का हो गया है, लेकिन चलते चलते एक मैसेज हमारे पास आ गया है तो मैं शॉर्ट में आपसे लेना चाहूँगी कि वो लिखते हैं कि सर, एलोपैथिक में गॉल ब्लैडर स्टोन ऑपरेशन से निकाला जाता है, यूनानी मेडिसिन में कोई दवाई है जिसकी गॉल ब्लैडर स्टोन घुल जाता हो या ख़त्म हो जाए?
0: असल
1: ये
0: में
1: रिकू सिंह,
0: हाँ, ये बहुत
1: रिकू
0: सही
1: सिंह
0: सवाल इन्होंने किया है, अच्छा सवाल है। इसमें चूंकि यूनानी में जो है हम दवाएं जो देते हैं वो लीवर के इम्प्रूवमेंट के लिए देते हैं, ये सर्जिकल केस असल में है, इसलिए हम इसको रेफर कर देते हैं ताकि इलाज बिलियर के तौर पर यानी सर्जरी उसकी आसानी से हो जाए और उससे फ़ायदा उठाए वो।
1: तो वक्त हो चला है जाने का, लेकिन जाते जाते एक लाइन में संदेश हमारे श्रोताओं के लिए आप क्या देना चाहेंगे? डॉक्टर सैयद, आप बता दीजिए संदेश हमारे श्रोताओं के लिए।
0: देखिए, काफ़ी अच्छे सवाल आता है और मुख्तसर बात यह है कि हमने सबसे पहले भी ये बात कही थी कि सादा खाना खाएं, ताज़ा खाना खाएं, समय से खाना खाएं और समय से सोएं, ये बहुत ज़रूरी है ताकि हम खुश रहें और खुश कभी रहें जब सेहत हमारी अच्छी होगी।
1: और डॉक्टर सूफी, आप क्या संदेश देंगी?
2: मेरा भी यही कहना है कि खाना फ्रेश खाएं, ताज़ा खाएं, वर्जिश करें, नींद अच्छी लें और खुश रहें।
1: तो दोस्तों, धूप की गर्मी पर हमारा बस नहीं, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखना हमारे हाथ में जरूर है। तो पानी भरपूर पीजिए, संतुलित आहार लीजिए और अपने पाचन तंत्र को स्वस्थ रखिए, क्योंकि पेट रहेगा दुरुस्त तभी जिंदगी रहेगी मस्त। आज कार्यक्रम में हमारे साथ रहे डॉक्टर सैयद अहमद खान, यूनानी एक्सपर्ट, और डॉक्टर सूफिया।

0: साही, चीफ मेडिकल ऑफिसर यूनानी मेडिसिन CGHS। आप दोनों हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अहम जानकारी हमारे साथ साझा की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
2: आपका भी बहुत शुक्रिया।
0: दोस्तों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर मेल कीजिएगा। हमारा मेल आईडी है healthairdelhi@gmail.com। जाते जाते बस इतना कहूंगी, अच्छी सेहत कोई मंजिल नहीं बल्कि जीवन भर की एक सतत यात्रा है। इसलिए अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। इसी संदेश के साथ मैं शिल्पा गुप्ता आपसे लेती हूँ इजाजत। फिर रूबरू होंगे एक नए विषय के साथ। स्वस्थ रहे, सजग रहे, मुस्कुराते रहे। नमस्कार।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल। दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: वाह जी वाह।
1: ये मेरी सोच है। मेरे ख्याल भी कोई भी आ जरूरतमंद आ जो पैदल नंगे पैरी तो रह जाता, उन्हां नूं अगर तुसी मोची है भी नहीं है ना, फिर भी तुसी उन्हां दी हेल्प कर सकते हो, उन्हां चप्पल लेके भी देख सकते हो।
0: वैसे तुसी कदे जरूरतमंद किसी जरूरतमंद दी मदद कर दे हो?
1: जी बिल्कुल, मैं एक शॉपकीपर हाँ, मैं
0: अच्छा जी,
1: हेयरड्रेसर हाँ,
0: अच्छा जी।
1: और तकरीबन मैं 40 साल तो कम कर रहा हाँ, और कोई भी साढ़े इतने लागे आ बिहारी आ, उन्होंने छोटे छोटे बच्चे आ, मैं 2-3 बारी उन्होंने मैं चप्पलां लेके दित्तियां, वो नंगे पैरी आंदे सी, मैं उन्होंने साढ़े लागे एक शॉप आ, मैं तो उन्होंने जो भी उन्होंने फिट पैंदियां सीगियां जां चप्पल वगैरह जां शो अपने बूट वगैरह, उन्होंने मैं लेके दिता हुंदा सी। और इन्ना तुहानूं ना इक तुसीं अगर किसी जरूरतमंद की इन्नी हेल्प कर दोगे, मेरे ख्याल तुहानूं ना अंदरों इन्नी सोहनी फीलिंग आएगी, इन्ना सुकून मिलेगा, मैं कहना तुसीं सोच भी नहीं सकते।
0: वाह जी वाह, बिल्कुल सही कहा तुसीं।
1: ये मेरे थॉट से। बाकी अगे कहंदे हुंदे आपां किसी नूं समझा तां नहीं सकते, सिर्फ एक सलाह भी उहनूं दो जे कोई मन्ने तां।
0: सही क्या,
1: कहंदे सलाह अजकल सलाह भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं हैगी, पैसे
0: बिल्कुल
1: लेंदे।
0: बिल्कुल।
1: कहिंदे छर जे सलाह लैनी है तो मैनू पैसे पे करने पैने आ। अगर अगर तुहाडी तो मेरी सलाह चंगी लगी तां यूज कर लियो, नहीं तां फिर तुहाडी तां सोच हैगी हैगी फिर।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल। मिंटू जी, सानू साडी तुहाडी सोच ते तुहाडी सलाह दोवें बहुत वधिया लगियां।
1: जी मेहरबानी। प्रिया
0: ते तुसी हुण इह दसो कि गाना केड़ा सुनोगे?
1: जी, मैं अक्सर तुहानू सुनदा रहिंदा वा, मैं कल भी तुसी आए सी, कल भी मैं सुनदा, मैं ट्राई नहीं किया, सिर्फ मैं सुनदा पिया सी। मैं ज्यादा
0: अच्छा,
1: करके लिसनर आपां सुन सकदे हां, ठीक
0: हाँ
1: है ना।
0: जी,
1: ते मैनू तुसी गाना सुना दियो रवि साहब दी आवाज विच, कोई भी तुहानू चंगा लगदा उस प्ले कर दियो। तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद जी, धन्यवाद फोन करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सो इदां ही तुसीं भी साडे नाल जुड़ सकदे हो, साडे नाल अपने दिल दीआं गल्लां सांझियां कर सकदे हो, ते सानूं दस सकदे हो कि जे तुहानूं मौका मिले एक दिन दे लई कुछ बनन दा, ते तुसीं की बनना चाहोगे? फिलहाल तुहाडे लई पेश कर रही हां मोहम्मद रफ़ी ते आशा भोसले होरां दी आवाज़ दे विच ये प्यारा जिहा गीत।

नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब जी, की हाल है जी। दोस्तों, शाम दे 7 बज चुके ने और प्रोग्राम शुरू हो चुका है जी। फिल्मी दुनिया जड़ा कि थोड़ा सारिया का मनपसंद है जी। मैनू पता है तुसी सारे इस प्रोग्राम की उड़ीक करते रहते हो, क्योंकि यह प्रोग्राम ही बड़ा मस्ती भरिया है। मस्ती भरिया कहने का मतलब यह है कि इस प्रोग्राम के असी तुहानू लैके चलते हैं जी फिल्मी जगत के। फिल्मी जगत और फिल्मी सितारे जिन्हों के बारे असी तुहानू उन्हां दी फिल्मी सफर दीआं गल्लां करते हैं और कई प्यारे प्यारे जे गीत जड़े हैं सुनांदे हैं। उदां ही अज कुछ सितारियां दी और कुछ स्टोरीज़ दी गल्लां भी करांगे, ते सुनते रहना प्रोग्राम फिल्मी दुनिया जड़ा कि प्रसारित हो रहा है जी FM जलंधर ते और यह आकाशवाणी का केंद्र है जी। अज शुरुआत करते हैं जी असी एक जाने माने सितारे दी जी। बिल्कुल जी, जिन्हों का नाम है जी जानकी दास मेहरा। हिंदी सिनेमा का महान किरदार अदाकार जानकी दास जी भारतीय फिल्म इतिहास के उन्होंने कलाकारों विचों एक ने जिन्होंने मुख हीरो ना होने के बावजूद भी अपनी अदाकारी नाल दर्शकों के दिलों में खास थां बनाई। वो एक अदाकार, प्रोडक्शन डिजाइनर, लेखक अते खिडारी भी रहे जी। बिल्कुल जी, पहला वो खिडारी सी, उस तो बाद उन्होंने कई यहोजी चीज़ा कीतियां जिहड़ी कि फिल्म इंडस्ट्री नाल वह जुड़ गए। वो सारी चीज़ों के बना बारे असी गल करांगे। लगभग 7 दहाकियां तक फिल्म उद्योग नाल जुड़े रहे अते 1000 तो वध फिल्मों विच उन्होंने काम किया। जी, जानकी दास जी का जन्म अज ही दे दिन यानी 13 जून 1910 विच लाहौर यानी उस समय बरतानवी भारत विच होया सी। बचपन तो ही उन्होंने खेड़ा ते रंगमंच का शौक सी। फिल्मों विच आउण तो पहला वह साइकलिंग दे मशहूर खिडारी रहे। कुछ श्रोतियां अनुसार उन्होंने साइकलिंग विच कई रिकॉर्ड भी बनाए अते भारत विच साइकलिंग दे विकास लई भी योगदान दिता। उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया सी साइकलिंग दा 1934 तो 1942 ओलंपिक्स गेम्स हुई सी उन्हां दे विच, ते समर ओलंपिक्स इंडिया दे विच जिहड़ियां हुई सी 1936 दियां समर ओलंपिक्स विच, पर उन्हां दा मतलब मैंशन नहीं है, पर एज़ पर जिहड़ा जो भी कहिंदे ने उन्हां दे बारे जां उन्हां नूं जिहड़े चंगी तरह जानदे ने उन्हां दे अकॉर्डिंग यह जिहड़ी जानकारी ओह है।

हाँ जी, गाना सुन के मज़ा आया ना। जी बिल्कुल जी। और प्रेम धवन जी, उन्हां दे बारे गल चल रही है, और उन्हां दा नाम सब तो वध देश भगती दे गीतां करके याद किया जाता है। उन्हां दे लिखे गीत भारतीय आज़ादी संघर्ष दे शहीदां दी याद नूं अमर करते हैं। वतन वतन इहो जिहे गीत जिहड़े ने। उस तो अलावा मेरा रंग दे बसंती चोला, उस तो अलावा यह फिर जिहड़ी जिन्हां दे गीतां दी गल कीती है यह शहीद फिल्म चों है। उस तो अलावा यह मेरे प्यारे वतन काबली वाला, छोड़ो कल की बातें हम हिंदुस्तानी जिहड़ा फिल्म है उस दे विच, इहो जिहे कई गीत ने जिन्हां ने इन्हां नूं अमर बनाया है। और आपां गल कर रहे हैं जी प्रेम धवन जी दे बारे, और इन्हां दे ही जिहड़े मशहूर गीत ने उस दे बारे भी आपां तुहानूं थोड़े थोड़े जिहे लिरिक्स सुनाने हैं। शहीद फिल्म दे विचों

0: कितना अच्छा आदमी नहीं समझती थी।
1: इसी बात पर जी चाहता है वो जो चांद है ना, उसे नोच के आपके माथे पर लगा दूं, वही चमका करे।

सिंगड़ जाएगा, यानी कि छोले वांगू सिकुड़ जाएगा, और जिहड़ा मिलावटी जिहड़ा आ उह पिघल के थोड़ा जिहा चिपचिपका चिपचिपा हो जाता है। तो गुनगुने पानी या नींबू च पाउण ते जिहड़ा आ शुद्ध पनीर कदी भी नहीं बदलता। दुध नूं चेक करना है तो दुध नूं तुसीं की करना है, यानी चिकनी सतह ते एक बूंद दुध दी पाउणी है, तो जे शुद्ध होएगा तो वह दुध हौली हौली वगेगा तो निशान छड्डेगा। उबाल के ठंडा करके आयोडीन पाउण ते नीला हो जाएगा, तो स्टार्च

ये पैसा, ये पैसा, और पैसा जरा पैसा बहुत जरूरी हो चुका है जी। इसलिए पैसे को संभालना भी बहुत जरूरी है। पैसे के नाल नाल एक होर अपडेट जरा है वो आ रहा है जी। जरा गोल्ड तुसी लै रहे हो वो कुछ अपडेट ने, जिमें कि गोल्ड जरा तुसी लेंदे 2 लाख तो उपर का लेंदे हो तो पैन कार्ड जरा मैंडेटरी जरा वो कर दिता गया जी। जे 10 लाख तो उपर का तुसी गोल्ड बाय करते हो तो पैन आधार के प्रूफ ऑफ इनकम भी जड़ी आ वो दी भी जरूरत होएगी। तो जड़ा बिल्स नू स्प्लिट कर लेंदे सी अलग अलग वो भी नहीं अलाउड है। और जे इदा का मतलब जड़ा ज्वेलर है वह करता है तो उसनों पेनल्टी जी वो मिल सकती है। 3% GST जरा गोल्ड के प्राइस से, 5% GST जी उस मेकिंग चार्जिज के उत्ते हैगी है जी। 1 लाख गोल्ड परचेज जी है तकरीबन वो जी GST आएगी 8,000 रुपये तक दी। कुछ गाइडलाइनस ने जिमें कि तुसी वैलिड टैक्स इनवॉइस जड़ा आ वह लेना आ ताकि मतलब लीगल ट्रबल ना आवे। तो हॉलमार्क जड़ा आ ज्वैलरी वह ही तुसी बाय करो। ये तो सी जी गोल्ड के उत्ते। और गोल्ड तो इलावा अजक ना वैसे चलो थोड़ी अलग गल कर लें, जो भी आप बाहर कितने जाने किसी शहर के चाहे अपना शहर है या बाहरला शहर है तो जो भी जाने हैं तो कई बार ना रस्ता भुल जाने तो रस्ता जो भुल जाने या फिर नवी जगह जाने तो उस दे लिए आप की करते हैं मैप लगा लें। पर कई जगह के उत्ते इदा होंगे कि नैटवर्क की प्रॉब्लम आ जाती है या फिर थोड़ा जोड़ा डाटा है वह खत्म हो जाता है या कोई होर दिक्कत आ सकती है जिस करके जो इंटरनेट जो यूज़ होना वह बंद हो जाता है। लेकिन उसका भी एक तोड़ जो तो दसन जा रहे हैं जी। उस दिन तुसी की करना है जी, गूगल मैप्स का एक फीचर है वो यूज़ करना है। खेड़ा जी ऑफलाइन मैप्स नू यूज़ करना है। हाँ जी बिल्कुल जी, ऑफलाइन मैप तुसी यूज़ कर सकते हो। ऑफलाइन मैप वरतन लई तुहानू पहला इंटरनेट चालू करके, यानी कि तुसी वाईफाई दे उत्ते तो वाईफाई चालू कर लो या अपने फोन दे उत्ते चालू कर लो। अपने फोन दे विच जगह या शहर का नक्शा जड़ा वह डाउनलोड करना है। एक बार डाउनलोड होने तो बाद तुसी बिना इंटरनेट के नेविगेशन के रस्ते जड़े वह देख सकते हो। अपने फोन विच तुसी गूगल मैप्स खोलो अते अपनी ID जिहड़ी आ ओह लॉगिन करो। उस शहर या जगह का नाम खोजो और जिथे तुसी जाना चाहते हो, स्क्रीन दे हेठां उस जगह दे नाम या पते ते टैप करो। दोबारा दस दिना, एक बार अपना गूगल मैप खोलो तो अपनी ID लॉगिन करो। जो लॉगिन है तो कोई गल नहीं, फिर जो जिस जगह तुसी जाना चाहते हो उसनू सर्च करो, उसका नाम लिखो तो उस तो बाद स्क्रीन के हेठा उस जगह के नाम या पते ते टैप कर दो। उस तो बाद मोर या फिर 3 बिंदियां वाली जी इनफॉर्मेशन जो होंगे उत्ते क्लिक करो। उत्थे आ जाता जी डाउनलोड ऑफलाइन मैप, उसनू क्लिक करोगे तो नाल ही तुहाडा मैप जिहड़ा वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। नीले बॉक्स नू एडजस्ट करके वह एरिया सैट करके मतलब उसनू करो तो जिसका नक्शा तुसी सेव करना चाहते हो तो डाउनलोड दबा दो, फिर वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और डाउनलोड होकर सेव हो जाएगा। और इस दी एक खास गल रखनी है कि तुहाडे फोन दे विच मैमरी होनी चाहिए है जी। मैमरी मतलब तुहाडी फोन दे विच स्टोरेज होनी चाहिए है उस मैप नू डाउनलोड होने के लिए। जो तुहाडे कोल इंटरनेट नहीं होएगा, मान लो तुहाडा इंटरनेट नहीं चल रहा कुछ भी है, कुछ नहीं करना मैप खोलना, ऑफलाइन उसनू तुसी यूज़ कर सकते हो। ऑफलाइन मोड दे विच तुसी गड्डी लई डायरेक्शन भी देख सकते हो, तो लाइव ट्रैफिक या साइकिलिंग या पैदल चल जिहड़े चलन दे रस्ते हैं तो बस स्टैंड दे जिहड़ी आ जानकारी है ऑफलाइन जिहड़ी आ ओह नहीं मिलदी। लेकिन होर चीज़ां मिल जांदियां ने जिवें तुहाडी पार्किंग लोकेशन, गड्डी खोजन दे विच भी इह मददगार हुंदा है। उस तों बाद जिहड़ी आ ग्रुप दी ट्रिप लिस्ट, पूरे परिवार दी ट्रिप तुसी तय कर सकते हो। इहदे विच मैप च जाके तुसी सेव्ड दे विच जाके लिस्ट करनी हो तो उहदे विच नवीं लिस्ट बनानी है और उह भी कर सकते हो। टोल कोस्ट एस्टीमेट लगा सकते हो, तो तुम अपने मैप के डेस्टिनेशन करना है रूट ऑप्शन, फिर उसके बाद टोल, उस पूरा टोल जरा वह आ जाएगा जी। और काफ़ी होर भी चीज़ा ने जोड़े मैप्स के वरत सकते हो। सो दोस्तों अगले गाने का जोड़ा समा हो चुका है जी, आओ सुनते हैं प्यारा जहा ट्रैक और छोटी जी इन्फॉर्मेशन हो

हाँ जी दोस्तों जी, प्रोग्राम तुसी सुन रहे हो जी दिल चाहते अपने दोस्त कुलदीप दे नाल, और फरमाइशां दा सिलसिला जिहड़ा ओह जारी हो चुकिया होया जी। और जिहड़ा आ अगला मैसेज आ चुका है जी साडे कोल, ओह सुनदे हां जी, पढ़दे हां जी और तुहानूं सुणांदे हां जी। पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान तो मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा जी, और मूवी है जी मेरे हमदम मेरे दोस्त, चलो सजना जहाँ तक गड़ा चले जी। बहुत ही इन्होंने फरमाइश जी बहुत ही प्यारे जे सॉन्ग दी कीती है। इन्हां दी पसंद दा गीत असीं लभ लिया जी और वो चला दिंदे हां जी, और तुसीं भी अपनी पसंद साडे कोल भेज सकदे हो। करना की है जी 9855101027 इस दे उत्ते अपनी फरमाइश भेजनी है हिंदी ते पंजाबी पुराने फिल्मी गीतां दी है। और जिवें फरमाइश पूरी करन जा रहे हैं ते आओ उदां ही तुहाडी फरमाइश पूरी करांगे जी।

जी दोस्तों, एक और मैसेज आ गया साढ़े को जी। सुप्रेम नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन जी। गीत कह रहे ने, लड़की बड़ी अनजानी है, सपना है सच है कहानी है, देखो ये पगली बिल्कुल ना बदली, ये तो बड़ी दीवानी है। वैसे मैं गाना गा के सुनाता, वैसे गाना फरमाइश मतलब सुनने की लोड़ है। जी बिल्कुल है जी, असी उस तरीके भी सुनावांगे। फिल्म है जी कुछ कुछ होता है, गायक ने जी अलका याग्निक और कुमार सानू जी की आवाज़ का गाना है। तो भेजे इन्होंने नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान तो, वेद मिडा अलका मिडा जी ने, और एंड च लिखा है जी धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। बाकी भी जो इस प्रोग्राम नू सुन रहे ने अपनी फरमाइश पूरी करवा सकते हैं, करना कुछ नहीं है जी। 9855101027 9855101027 जड़ा है ये साडा नंबर है जी, इस दे उत्ते हिंदी ते पंजाबी पुराने फिल्मी गीतां दी फरमाइश साडे कोल भेजनी है जी। ते आओ इन्हां दी फरमाइश पूरी करदे हां, और तुहाडी फरमाइश दा वेट करदे हां जी।

0: देती है।
1: मैं जट्टी अमला पगला दीवाना। दोस्तों जी बहुत ही प्यारा सोंग है जी, सारे नू बहुत पसंद आता है और मैनू भी बहुत वधिया लगता है। और जो ये गीत लगता है ना जी, बस नचन का दिल करन लगता। मैं भी इतने नच नच के घूमू, मारा पूरा गेड़ा कढ़ लिया स्टूडियो का, और मज़ा भी आता है जो इदा का गीत लगता है। चलो बहुत वधिया इहो जिहा गीत लगवाउण दे लई शुक्रिया जी। पर समा जिहड़ा आ देखो जी भज्जी जा रहा है जी, 9:38 जिहड़ा स्टूडियो की घड़ी दे विच हो चुके ने, और मैसेजेस बहुत सारे हले पे हुए ने, पर चलो कोशिश करते हैं जी मैसेजेस नू शामिल करन दा। दिल चाहता है पिंड मुलियां वाली जिला फाजिलका, प्यार भरी नमस्कार विनोद काटपाल, प्रवीण काटपाल, हनी काटपाल, दीक्षा काटपाल, जन्नत काटपाल जी ने मैसेज किया। और फिल्म का गीत कह रहे हैं कोई भी सुना दो जी, जरूर असी सुनावांगे, कोशिश करांगे जी। नमस्कार वड़िंगखेड़ा पंजाब तो मिंटू टॉमस पिंकी लवली आरती अरोड़ा जी कह रहे हैं कोई भी गीत सुना दो जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करन दे लई। और इस तो अलावा एक होर मैसेज आया साढ़े को, सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुचा सिंह पाठक, विनोदपुरी, और इन्होंने एक फरमायश की है जी, और कोशिश करांगे इन्हें फरमायश भी पूरी करते रहिए। मैसेज के एंड लिख रहे हैं खुश रहो मस्त रहो जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। जोन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो, विलिस डिकैस्ट्रो जी ने भी मैसेज किए सानू जनकपुरी सहारनपुर तो, और गुड ईवनिंग रिस्पेक्टेड होस्ट लिख रहे हैं जी ये, और कह रहे हैं आप किसी भी गीत में हमें शामिल कर सकते हो या आप फरमाइश पूरी करवा देना। और जी इन्हें फरमाइश आप नोट कर लिया जी, और कोशिश करा इन्हें फरमाइश जी असी पूरी जी करिए। तो दोस्तों करणवीर हाउस बूचो गैंचिया बठिंडा पंजाब तो, नमस्कार जी प्रेम प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप, सीमू एकम, दमन और अभिजोत जी ने मैसेज किया कह रहे हैं जी किसी भी गीत दे विच शामिल कर लिया जाए जी, और एंड च धन्यवाद लिख रहे हैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए सानू।

लिखी है और उस तो बाद मैसेज किया इन्होंने, सादुल शहर राजस्थान तो राम कुमार रिवाड़ और चंद्रकला रिवाड़ जी ने मैसेज किए, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। प्रोग्राम दिल चाहता है अमरगढ़ जिला श्री गंगानगर तो मैसेज कर रहे ने कुलवंत मान, लखविंदर कौर मान, खुशप्रीत कौर मान, गुरनूर मान, कुलविंदर कौर, हरविंदर मान जी कह रहे ने कोई भी फिल्मी गीत दे विच शामिल कर लो, और कह रहे ने प्रोग्राम लाइव सुन रहे हैं जी, बहुत ही चंगा लग रहा है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी ये लाइन सुन के जी, आह क्या मज़ा आ गया जी। सुखदेव सिंह, नरेंद्र कौर, सन्नी मन्नी, काका बिट्टू, लाडी, मास्टर मोहन, जनक नगर, जलंधर तो मैसेज कर रहे हैं और फरमाइश लिखी है जी, जी कोशिश करांगे थोड़ी फरमाइश पूरी करन दी। एक साडे कोल होर मैसेज आया जी, सिर्फ एक लाइन च मैसेज लिखे कर रहे हैं, हैलो सर, मूवी जुर्म सॉन्ग जब कोई बात बिगड़ जाए, पर ना इन्होंने अपना नाम लिखा ना ही अपना इन्होंने की कहिंदे आ कोई शहर का नाँ या जिस नूं डेडिकेट कर रहे ना ही उसका नाँ लिखा जी, कुछ भी नहीं लिखा, बस एक लाइन के इन्होंने मैसेज खत्म करता है। प्रिया आरजे जी आपको आदाब नमस्कार, धनोरी तैलीवाल तो निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू जी ने मैसेज किया और कह रहे हैं कि किसी भी गीत में शामिल कर लिया जाए जी, जरूर जी, तुम्हें बड़े बड़े प्यारे प्यारे वधिया वधिया जी गीत असी सुना रहे हैं जी। सैक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ तो टी डी मल्होत्रा, रितिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप जी, कालका तो शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज जी ने मैसेज किया जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करन दे लई। आपको प्रेम पूर्वक आदाब जी, गाम कुमार हेड़ा सहारनपुर तो मैसेज कर रहे जी, सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया और इब्राहिम, सद्दाम, अदीब और कह रहे जी एनी सॉन्ग और अपनी पसंद में जी, सारे ही साड़ी पसंद दे सॉन्ग ने जी जिहड़े असी चला रहे ने जी, और आदरणीय प्रसारक महोदय जी प्यार भरा नमस्कार। एक फरमाइश लिखी है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र तो पी एस ननवाहकर, निर्मला ननवाहकर, विशाल ननवाहकर, मलकापुर तो नारायण इंगले, सोपान तायड़े, आशीष मरहेकर जी ने मैसेज किया है और एंड जी धन्यवाद लिख रहे हैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए और फरमाइश थोड़ी असी नोट कर लिए जी, जरूर जी समा रहा तो असी जरूर जी पूरी करने की पूरी पूरी कोशिश जी वो करांगे। सो दोस्तों समा जिहड़ा बड़ी छेती छेती भज रहा है, पर चलो फरमाइश जी आपां नोट कीती सी वो असी प्ले कर दिंदे आ, उस तो बाद बाकी जिहड़ी आ वो भी आपां पूरी करांगे ते जिहड़ी इहनां दी फरमाइश आ वो आपां पूरी कर दिंदे आ। बाकी जिहड़े पूरी करन वास्ते की करना है 9855101027 दे उत्ते हिंदी ते पंजाबी फिल्मी गीतां दी फरमाइश भेजनी है जी, आओ ये फरमाइश कीता हुआ गीत सुनदे आ जी।

तेरे बिना जिंदगी गुजारेंगे नहीं, गुजरी अगर जिंदगी तो फिर संवारेंगे नहीं। तू जिस दिन नहीं होगी मेरे साथ, ए मेरी जान, तेरे अलावा हम किसी और को पुकारेंगे नहीं। बहुत ही प्यारी जी, वधिया जी शायरी अविनाश जी ने लिखी है, और ये प्रोग्राम शाम ए गज़ल 10 बज चुके ने और ये शुरू हो चुके हैं जी। और थोड़ा दोस्त कुलदीप इस प्रोग्राम में पेश कर रहा है, और कोई भी थोड़े विचों कोई शायर या कविता कोई लिखता है तो अपनी शायरी साढ़े नाल सांझी कर सकता है, लिखी हुई शायरी साढ़े को, और मैं अपने अंदाज से इस प्रोग्राम दे विच उस शायरी नू जरूर शामिल करने की कोशिश करांगा। और गज़लों का सिलसिला 10:30 बजे तक जारी रहेगा। गज़ल प्यार दा एहसास और हर एक चीज़ दा तकरार दा जिहड़ी कि शायरी दे रूप विच तुहानू दसांगे, सांझी करांगे, और शायरी भी सुनावांगे ते नाल नाल प्यारी जिहां गज़लां भी सुनावांगे। ते आओ जी, पहली गज़ल जिंदगी तूने, जगजीत जी दी आवाज़ दे विच आओ सुनदे हां ये प्यारी जी गज़ल।

जी राजेश्वर जोशी जी कुछ लिख रहे ने, आओ सुनते हैं की लिख रहे ने हो। रात भर यूं ही हम करवटें बदलते रहे, सपने बनते रहे और बनकर बिखरते रहे। रात भर यूं ही हम आशा निराशा की नैया में डूबते रहे, उभरते रहे। रात भर सपनों के घरौंदे बनते रहे और टूटते ही रहे। रात भर आसमां नीर बहाता रहा, चकोर चांद को चाहता रहा, दिए की रोशनी में पतंगा रात भर जलता ही रहा, जलता ही रहा, जलता ही रहा। पत्तों की सरसराहट में चौंकते ही हम रहे, कदमों की हर आहट में तेरा इंतजार ही हम करते रहे। रात भर यूं ही हम करवटें बदलते रहे।

अंकित जी दियां कलम चलकियां कुछ लाइना। हाले दिल बयां में सरेआम करता हूँ, हाले दिल बयां में सरेआम करता हूँ, अपनी कविता के हर अल्फाज तुम्हारे नाम करता हूँ। जो तुम हो तो लगता है पूरी दुनिया जीत जाऊँगा, जो तुम हो तो लगता है पूरी दुनिया जीत जाऊँगा, तुम बिन ये जिंदगी चंद टुकड़ों पर नीलाम करता हूँ। आले दिल बयां में सरेआम करता हूँ। और दिल दे उत्ते ही एक प्यारी जी गज़ल आओ सुनते हैं जी थोड़े रेडियो सेट दे उत्ते।

कुछ अनकही सी बातें इन आँखों में होती हैं, कुछ अनकही सी बातें इन आँखों में होती है, दबे हुए जज्बात इन आँखों में होती है। लोग पढ़ लेते हैं चेहरे की मुस्कुराहटों को, लोग पढ़ लेते हैं चेहरे की मुस्कुराहटों को, मगर छुपे हुए हालात इन आँखों में होते हैं। कुछ अनकही सी बातें इन आँखों में होती है।

जा रहे हो तुम, रुको एक पल, थमी है नजर, डगमगाया है दिल। जो कभी साथ बीते थे हसीन पल, उनकी यादों का अब क्या करूं मैं। तुम जो जाते हुए मुड़े ना दोबारा, छूट गया हाथों से हाथों का किनारा। आंखों से बहती इन अश्कों की धारा, इन खामोशियों का अब क्या करूं मैं।

सामने रहती है तू हमेशा मेरे, फिर भी मुझसे कुछ नहीं कहती है। दूर खड़ी रहकर भी तू हमेशा बस मुझे ही देखती जाती है। आ जाता हूँ जब भी करीब कुछ कहने को, न जाने तू कहाँ गुम हो जाती है। ढूंढता हूँ फिर मैं तुझे हर जगह हर मौसम में, मेरी हर सांस तुझे ही बुलाती है। सपनों में भी मांगता हूँ मैं तुझे खुदा से, सपनों में भी मांगता हूँ मैं तुझे खुदा से, और तू अपनी आँखों से गुस्सा दिखाती है।

किसी महबूब को मनाने वाला खुद गुलाब लगता है, मेरा यार चांदनी में नहाया हुआ आफताब लगता है, लाख मनाने के बाद भी रूठा रूठा सा लगता है, मेरा चांद हर हाल में फिर भी नायाब लगता है, क्यों ना दुनिया के लिए आसमां का महताब लगता है, मेरा चांद ही मगर मेरे लिए आसमां बेहिसाब लगता है, खामोश मुस्कुराना तेरा चांद पे अब्र का हिसाब लगता है, जिंदगी के हर सवाल का मेरे तू ही जवाब लाजवाब लगता है।

मस्ती भरी हवा जो चली, मस्ती भरी हवा जो चली, खिल खिल गई ये दिल की कली, मन की गली में है खलबली के उन

एफ एम बर्न 102.7 MHz से आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल और तुसी प्रोग्राम इंजॉय कर रहे हो जी। एक प्यार का नगमा है और प्यारे प्यारे नगमे प्यारे प्यारी जी शायरी दा सिलसिला जारी है जी। खोजते हैं प्यार की नई राहें, खोजते हैं प्यार की नई राहें, जहां साथ मिलकर बुने अनकहीं चाहें। धूप हो या छाँव का हो बसेरा, हर मोड़ पर मिलता है तेरा ही पहरा। रास्ते प्यार के बड़े अजीब हैं, कभी फूल हैं तो कभी नसीब हैं। अनजाने मोड़ों से गुजरता है ये कारवां, हर कदम पर लगता है नया जहां।

FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से है आकाशवाणी जलंधर दा FM रेनबो चैनल। रात दे 11 बज चुके ने। अज दी सभा दे सारे प्रोग्राम इत्थे ही समाप्त हुंदे ने। सवेरे 5:55 ते फिर तो तुहाडे नाल जुड़ांगे नवें प्रोग्रामां दे नाल। तद तक लई सानू दिओ इजाजत। शुभ रात्रि। जय हिंद।